पल पल में शामिल है। वो कौन है जो मेरी मंजिल है? वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूँ?

बन के साया मेरे संग रहता है कौन, मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले।

इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Mirchi.
1: Escavana, buscavana, sacavana. Trabala. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हाय शिवानी.
2: हाय
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार.
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे अच्छा. टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ. शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे. अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता. मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए. वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले.
3: ये सिर्फ 3
2: करता.
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा.
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ. इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद ही कुत्तों जैसे ना. आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं
3: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ. मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ुकु.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
4: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: हरनोर श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स जुड़ गई है आपके साथ। July 29th वेनसडे का दिन, व्हाट अ डे। मतलब ऐसा कुछ खास तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है फिलहाल आज के दिन में, लेकिन आज ही बस मैंने सोचा कि यार डेट सुना दूँ और दिन सुना दूँ, स्पेशली क्योंकि यार वेनसडे का दिन है। मतलब आजकल मेरा कुछ नया ही चल रहा है कि मैं जनरली थर्सडे से एक्साइट होने लगती हूँ वीकेंड के लिए, लेकिन टुडे आई रियली फील कि भाई वेनसडे से ही मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि जस्ट छुट्टी से आई हूँ और रिलैक्स करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला है। तो आई जस्ट फील कि भाई जस्ट फटाफट से ये वीकेंड आ जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। और यहाँ पर आपको भी मैं आज बता दूँ, आज से ही इनफैक्ट बता दूँ कि भाई वीकेंड पे करना क्या है आपको, क्योंकि कतर में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं स्पेसिफिकली बच्चों के लिए। बच्चों की छुट्टियां चल रही है, एक महीना और तकरीबन यहाँ पर छुट्टियां बरकरार रहने वाली है, तो इसमें आप अपने बच्चों को कैसे एंटरटेन कर सकते हैं थोड़ी देर में बताती हूँ मैं, और साथ ही साथ खुद को कैसे एंटरटेन कर सकते हैं भले ही वो कतर में कहीं इवेंट्स पर हो या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर हो। एवरीथिंग राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले नेहा कक्कड़ और मीका पाजी की आवाज में ये ओजी वाला गाना कुमार सानू का साथ।
2: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
1: माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वेल, विशाल मिश्रा की आवाज में ये गाना आपको सुनाया है और ये गाना बिल्कुल आपके नाम है इन दिस ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग तो ब्यूटीफुल लग ही रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार आज का दिन थोड़ा सा ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है। वजह ये कि ये जो इतनी शदीद गर्मी के जो शिकार बने पड़े हैं हम यहाँ पर काफी दिनों से, और हो सकता है आज थोड़ा सा रिलीफ आ जाए। वो कैसे भाई? बारिश की बूंदों से। सो होपफुली बारिश होने के चांसेस आज है, और वेदर क्या कहता है जरा ये भी देख ले।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। देखिए वेदर जो है वो तो कह रहा है कि आज 42 डिग्री सेल्सियस पर ही मैक्सिमम रहेगा, वेर एज मिनिमम भी 34 पर ही रहेगा। दिखाई तो यही देख दे रहा है कि भाई सनी सनी सा है और जो ह्यूमिडिटी है कल से ज्यादा है, लेकिन मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट ये भी कहती है, कतर मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट, मैं बता दूं आपको कि 29th of July यानी आज और कल हल्के हल्के से बारिश के चांसेस है कतर के कुछ एरियाज में। और अक्सर ये होता है कि ये जो एरियाज है ना जनरली हमारे दोहा से दूर रहते हैं। बस उम्मीद यही है कि हमारे आसपास में, हम जहाँ रहते हैं दोहा में, वक्रा में, ये सारी जगहों पर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो जरा अच्छा लगेगा, है ना। मीनवाइल चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। सचिन टंडन की आवाज में माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची शॉट।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
1: Stay tuned.
2: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
3: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
4: बहुत कुछ होगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन,
7: इट्स हॉट।

दर्शन रावल और अंतरा मित्रा की आवाज में खूबसूरत सा गाना राइट इट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और इस साल वेकेशन पर गई नहीं है, बैक टू योर होम टाउन, तो पर काफी बचत कर ली है। अब बचत कर ही ली है तो उसे शॉपिंग करने में थोड़ा सा खर्च तो कर ही सकते हैं। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आफरीन है आपके साथ राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, क्योंकि आप कहीं गए नहीं हो, प्रॉबेबली यू आर हियर ओनली दिस समर्स, तो बस शॉपिंग का सीजन तो हमारे यहाँ पर कतर में जोरों शोरों से चल ही रहा है। वेल, दोहा शॉपिंग सीजन 2026 इज नाउ ऑन एट DECC। जी हाँ, शॉप प्रोडक्ट्स फ्रॉम 20+ कंट्रीज एंड ये सब कुछ अंडर वन रूफ ओनली। हर चीज़ है वहाँ पर, परफ्यूम से लेकर एक्सेसरीज से लेकर होम डेकोर से लेकर कारपेट से लेकर शूज, अबायास, फूड प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीजें। एंट्री एब्सोल्युटली फ्री है, तो बस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। और ये तो एक है ही पार्ट, उसके अलावा हाला शॉपिंग फेस्टिवल, ये जो है हमारा समर शॉपिंग फेस्टिवल स्पेसिफिकली, ये हमारे कतर के बड़े बड़े मॉल्स में चल ही रहा है, जहाँ पर आपको बहुत कुछ जीतने का भी मौका मिल रहा है। सो ऑल आई कैन से कि यार बखूबी यहाँ पर लोग जानते हैं कि अगर लोग ट्रैवल नहीं किए हैं और जो लोग यहाँ पर हैं, तो फॉर श्योर सेविंग्स तो इनकी हुई है। अब सेविंग्स इज इक्वल टू थोड़ी सी एक्स्ट्रा शॉपिंग, वाई नॉट। श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ में अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
2: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
3: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
1: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है, मेरी टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
1: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: विशाल मिश्रा की आवाज में ये गाना इज एब्सोल्युटली डूइंग तबाही फ्रॉम दिस मूवी टॉक्सिक, जहां पर कियारा आडवाणी कहर डाल रही है एंड साथ दे रहे हैं उनके यश। वेल, मिर्ची घड़ी का इशारा फिलहाल हो रहा है सुबह के 7:03 की तरफ और गुरु की आवाज में कहर ही अगला गाना आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन उसके तुरंत बाद आफरीन आपके लिए एक मजेदार OTT रिकमेंडेशन लेकर आने वाली है। सो यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट इज माइक सिदल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: देखो दोस्तों, अगर ये क्राइम थ्रिलर्स और डार्क कंटेंट के जमाने में अगर ऐसा लगता है कि यार ऐसी सीरीज देखनी चाहिए जो आपको हंसा भी दे और थोड़ा सा एंड में ना फील गुड वाली फीलिंग भी दे दे, देन आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और ओटीटी मार्केट में,
1: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
2: फ्रेश है भैया, फ्रेश है, एकदम नया आया है.
3: अरे मार्केट में नया क्या है?
0: यस, मार्केट में ओटीटी के नया ये है आदर्श बाल विद्यालय, विच इज स्ट्रीमिंग ऑन प्राइम. अब पहले बात करते हैं इसके स्टार कास्ट की. के मेनन एज हेडमास्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, जहां के मेनन का मैंने नाम ही लिया है, ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, राइट? ही इज सिंपली ब्रिलियंट एज एन एक्टर, और यहां पर भी उनकी एफर्टलेस एक्टिंग बिल्कुल नजर आती है, और कह सकते हैं इस पूरे सीरीज के बैकबोन वही है. दूसरी तरफ अर्चना पुरन सिंह, और यहाँ पर दिस टाइम शी इज नॉट नोन फॉर हर आइकॉनिक लाफ्टर, लेकिन बहुत ही ब्यूटिफुली रिस्ट्रेन परफॉर्मेंस के लिए इन्हें जरूर यहाँ पर याद रखा जाएगा. उसके अलावा देयर आर सो मेनी पीपल, यार, नवीन कस्तूरिया, देवेन भोजानी, अभिमन्यु सिंह, प्रसन्ना बिष्ट एंड सो मेनी मोर सपोर्टिंग कास्ट इन दिस सीरीज आदर्श बाल विद्यालय. और इन सबको मिलकर ना ये ऐसा लगता है ये स्कूल आपको इतना रियल बना देती है कि लगता है हम सबने कभी ना कभी ऐसे टीचर्स और स्टूडेंट्स ना जरूर देखे होंगे. हर कैरेक्टर को अपना मोमेंट मिलता है यहाँ पर, और वही सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. देखिए कहानी कुछ ऐसी है कि गवर्नमेंट स्कूल की स्टोरी नहीं है, ऐसा लगेगा आपको कि ये उन लोगों की कहानी है जो लिमिटेड रिसोर्सेस के बावजूद भी एजुकेशन में होप ढूंढते रहते हैं. यहाँ कॉमेडी भी है, इमोशंस भी है, सोशल मैसेज भी है, लेकिन नोवेयर यू विल फील दैट इट्स एक्चुअली प्रीची, एंड दैट्स व्हाट ब्यूटीफुल. देखिए अगर आप उस कैटेगरी में हो ना जहाँ आपको पंचायत, गुल्लक या स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी टेलिंग पसंद है, देन आदर्श बाल विद्यालय विच इज स्ट्रीमिंग ऑन प्राइम हैज टू बी ऑन योर वॉच लिस्ट. मैं हूँ आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक, राइटर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Takes. Milchi.
1: Iskabana, Burka, puskabana, sakabana.
2: Rabbala.
1: Burka, burka. Na vietvala burka.
2: Milchi, burka.
3: Hello,
4: Mr. Gotham.
3: कौन बोल रहे हैं?
4: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं आप सुना आप वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: हाँ, सर कुछ गा के सुनाएगा.
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? है ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे एक काम करो, अपने गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको.
4: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
3: कौन से गाने
4: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
3: सुन ले बात, मेरी बात सुन, पहले बात सुन.
4: हाँ सर.
3: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर
4: रहा है सर. बोलिए.
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
4: जी सर.
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका.

0: Mirchi Morga. Na vét kézzát. Only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, again.
2: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
3: Enjoy 0% making charges on select tournaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
4: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल, अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाज में ये गाना अभी आपने सुना राइट हियर ऑन मिर्ची और जुड़ गई है आपके साथ। हाँ जी, कतर में जो है ना, हमारे कभी भी ऐसा, देयर इज नेवर अ डल मोमेंट आई फील, हमेशा ना कहीं तो रौनक लगी रहती है। एंड आई फील आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस ना, सूक वाकिफ एक ऐसी जगह है, भले ही आप ठंडियों के वक्त वहां पर जाओ तब तो अच्छा लगता ही है कि यू जस्ट चिल आउट इन द ओपन आउट देयर, रेस्टोरेंट्स इतनी सारे हैं। लेकिन आप जब गर्मियों के टाइम में जाते हो ना, तो आई सी देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स आउट देर। जैसे मैंगो फेस्टिवल था, इंडिया का था, 10 दिन चला, उसके बाद में पाकिस्तान का फेस्टिवल मैंगो चला। अब इट्स टाइम फॉर 11th लोकल डेट फेस्टिवल जो सूक वाकिफ में, ये 10th अगस्त तक रहने वाला है। अब इसके टाइमिंग्स जो है 4 बजे से लेकर 9 बजे तक है, और वीकेंड्स को जो जैसे फ्राइडे सैटरडे है, ये चलिए 9 की जगह 10 बजे तक रहेगा। और यहाँ पर इनफैक्ट इट्स नॉट जस्ट अ सेल ऑफ डेट्स, यहाँ पर विजिटर्स कैन एंजॉय डेली कॉन्टेस्ट, यस कल्चरल प्रोग्राम्स भी है, एंड अवेयरनेस ऑन पाम एंड फ्रूट ज़कात, ये सारी चीज़ें हैं फॉर ऑल इंटायर फैमिली। कुछ ना कुछ अलग तरीके से ये करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट डालने की, कुछ ना कुछ इंफरटेनमेंट डालने की, इनफैक्ट आई कुड से। सो दिस ईयर द 11th लोकल डेट फेस्टिवल एट सूक वाकिफ इज समथिंग आई थिंक सो यू शुड नॉट मिस। और डेट्स की जो फायदे हैं ये तो सब हम जानते ही हैं कि यार, दिन में ना एक खजूर, एक डेट आपके जो हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, राइट? तो बस डोंट मिस इट आउट। और मैं हूं आफरीन आपके साथ। अगला गाना जो सुना रही हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स मेरे प्लेलिस्ट से, परेश पहुजा की आवाज में। मुझे जरूर बताना आपको लगा कैसा ये गाना।
2: दूरों दूरों मैं,
1: आई वुड से जेन ज़ी का गाना है ये, समवेयर इट डिड टच मिलेनियल्स।
2: कहां तू
1: और मिर्ची, इट्स हॉट।
2: कहां

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
2: Enjoy 0% making charges on select tournaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची 1 It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: मोहित चौहान की दमदार आवाज और ये गाना फ्रॉम द मूवी चमकीला। और आ गई हूँ मैं थोड़े से दिमाग के घोड़े जो है दौड़ाने पड़ेंगे माय दोस्त, क्योंकि यार आफरीन लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट गेम तो लेकर आई है आप जानते हो बखूबी से, लेकिन आज का जो डायलॉग है ना नॉट सो ईजी, और जिसने जवाब दे दिया सही पहले ही सल्यूट है भाई साहब। तो बस रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से आज का सीन सुनो।
0: लाइट्स कैमरा Scene test.
2: Sorry about that.
3: तुम अमेरिकन से लगता है कि हर चीज तुम्हारी है? अरे कहीं भी घुस जाते हो, किसी के भी देश में बेशर्मी की भी हद होती है। पूछने में तो हेटी होती थी ना तुम्हारी।
2: Oh, so now it's political? Come on, इतनी बड़ी बात तो नहीं हुई।
3: हमारे यहाँ होती है, हमें लिमिट में रहना आता है। बर्गर छाप कहीं के
1: कौन है ये एक्ट्रेस, कौन है ये एक्टर? प्रॉबेबली इन दोनों ने इसी मूवी में एक साथ काम किया है, इसके आगे पीछे कभी नहीं किया है। और एक हिंट दे दूं, इस मूवी का जो टाइटल है ना एक शहर के टाइटल पे बेस्ड है, शहर के नाम पे बेस्ड है। बहुत बड़ा हिंट था ना ये। 5000196 इज माय नंबर। फटाफट से यहाँ पर व्हाट्सएप करो, वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, लाइक मैसेज टाइप करके भी कर सकते हो, लेकिन अपना नाम जरूर लिखो यार। अच्छा खासा हिंट मैंने दिया है आपको कि कोई शहर का नाम क्या हो सकता है। टू इजी या बस हो गया। उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में लेट मी टेक यू टू 90s नाउ भाई, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक। सुबह सुबह 90s वाला ढोस बड़ा ही अच्छी वाली फीलिंग देगा आपको, यकीन माने। एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
1: Janelia Deshmukh.
2: Are you an honest critic?
3: I'm an honest critic, but I'm also good for your ego.
2: Are kya baat hai?
3: No, like even if you're my friend,
2: I mujhe validate kar le yaar. Hello, Janelia. I'm not feeling great.
3: Are you honest too,
2: man? You're a queen. Where's your crown?
1: She's an honest critic, but a very funny person also. Ye thi Janelia Deshmukh on Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
4: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
5: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से.
4: योर स्पेशल ऑफर?
5: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है. ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए.
4: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
5: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है.
4: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए. अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.
6: Our business is our business, none of your business.
7: Par didi, our entertainment is your entertainment. Qatar ka number one radio station.
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: स्वर्णिगम की आवाज, और हम कहीं गुमशुदा नहीं है, हम यहीं पर है यार। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग, वेनसडे मॉर्निंग है। ऑलमोस्ट हमारा हफ्ता खत्म होने आया है, और ऐसे में आफरीन जो है इस वक्त पर ना बहुत आपके दिमाग पर ना एकदम जोर डालती है। वो कैसे यार, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट है, और आज का इट इज नॉट ईजी पीजी, बट शायद मेरे हिंट बहुत ज्यादा ईजी पीजी बना देते हैं ऐसे। व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, भाई सीन सुन लो और बता दो कौन सी मूवी से है। बस
1: लाइट्स कैमरा Scene test.
2: Sorry about that.
3: तुम अमेरिकन को लगता है कि हर चीज तुम्हारी है? अरे कहीं भी घुस जाते हो, किसी के भी देश में बेशर्मी की भी हद होती है। पूछने में तो हेटी होती थी ना तुम्हारी।
2: Oh, so now it's political? Come on, इतनी बड़ी बात तो नहीं हुई।
3: हमारे यहाँ होती है, हमें लिमिट में रहना आता है। बगैर छाप कहीं के।
0: कौन है ये हीरोइन जो इतनी भड़की हुई यहाँ पर नजर आ रही है? और बहुत सारे यहाँ पर मैसेजेस आए हैं, क्योंकि मैंने ऐसा हिंट दिया था कि ये जो मूवी का नाम है ना, ये एक शहर के नाम पर है। दैट वॉज क्वाइट इजी बीसी। उसके बावजूद यहाँ पर आप गलत जवाब दे रहे हो, जैसे लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, ये कौन सी मूवी है मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अब्दुल रजाक का यहाँ पर मैसेज आया है, लेकिन उसके अलावा मोहम्मद यूसुफ खान का यहाँ पर मैसेज है, नेहा का मैसेज है, और ये कौन है भाई, अपना नाम जरूर लिख लिया करो यार। नंबर एंडिंग 8332, और इनका ये कहना है कि आफरीन ने जो डायलॉग सुनाया तुमने, दिस इज फ्रॉम दिल्ली सिक्स। यस, सोनम कपूर की आवाज थी ये। अभिषेक बच्चन बीच बीच में थोड़ा सा वो कुछ कह रहे थे। वेल, दिल्ली सिक्स की जहां बात हुई है, प्लेइंग नेक्स्ट ट्रैक ऑफ दिल्ली सिक्स, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स, बिकॉज यार AR रहमान ने इसकी म्यूजिक जो थी पूरी मूवी में बहुत ही बेहतरीन दी थी। एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू पिक वन सॉन्ग। गेंदा फूल है, मस्सक कली है, एंड देन वी हैव दिस। या And the song goes out to all those people जो दिल वाले दिल्ली से belong करते हैं, ये आपके लिए खास। Enjoy this track right here on Mirchi Mike, Sadhu Tagafreen के साथ, it's hot.

0: passes como
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
1: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
2: ओ माय बॉय, तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ?
3: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: संजू राठौर की आवाज में वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स और संजू की आवाज में ना मुझे सारे गाने पसंद ही आते हैं। प्रॉबेबली उनकी आवाज और उनके लिरिक्स बड़े प्यारे लगते हैं। चलिए आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची और मिर्ची घड़ी का इशारा है सुबह के 8:03 की तरफ। अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है और उसके बाद कुछ ऐसा लेकर आ रही हूँ फॉर ऑल द किड्स आउट देयर। सो यू गॉट टू वेट एंड लिसन टू दिस ऑन मिर्ची। इट्स हॉट

अच्छा सोचिए, अगर आप कल सुबह उठ जाए और दुनिया से सारे रंग गायब हो जाए तो? यानी जो रेनबो है वो सफेद और ग्रे हो, पेड़ों का हरा भरा रंग ही ना हो, लाल गुलाब बस एक प्लेन फूल लगे, सनसेट में ये ऑरेंजिश येलोइश कलर ही ना हो, बिल्कुल फीका सा आसमान हो, कितनी बेरंग लगने लगेगी ना जिंदगी। तो बस सच तो ये है कि हम कलर्स को सिर्फ देखते नहीं फील भी करते हैं, है ना। ग्रीन हमें सुकून देता है, ब्लू शांति का एहसास, और येलो जो है ना वो खुशी का एहसास देता है। कलर्स ना हमारी इमोशन की लैंग्वेज जरूर है, और इसी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल दिया है कलर वर्स ने, जो अब कतारा कल्चरल विलेज में है। ये ओपन हो चुका है और यहाँ कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ से रंग खो गए हैं और विजिटर्स उन कलर्स को वापस लाने की जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग, नहीं? एंड ये सिर्फ ना बच्चों के लिए नहीं है, आई एम श्योर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर विल आल्सो एंजॉय दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पर 7 इमर्सिव जोन्स है, इंटरैक्टिव गेम्स है, लाइव परफॉर्मेंसेस है, सरप्राइज कैरेक्टर्स है। तो यार बच्चों के तो मजे ही, लेकिन एडल्ट्स भी अपने इनर चाइल्ड को जरूर डिस्कवर करेंगे। अगर आप अपनी फैमिली आउटिंग प्लान कर रहे हैं तो दिस इज वन मोर ऑप्शन यू हैव, दैट इज कलर वर्स हैपनिंग एट कतारा कल्चरल विलेज। माइक सिद्धल तक आप ट्रीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidba la burka. Milci, burka.
1: हेलो
2: अशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। वो कह रहे थे उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका गड्ढो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया
1: है
2: फोन।
1: वो भी जो है ना, कुछ प्रॉब्लम है वो।
2: आ गए वो भी आ गए। एक मिनट होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है वो, क्या मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आ गए वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आपको पहले आ रहा हूँ।
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नहीं है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
1: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
0: अभी कॉल करें 3100813।
2: बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
1: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
2: क्यों, वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
1: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
2: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
1: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
2: ओह, मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस।
1: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
0: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग। लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
3: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइंस हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलू हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। TNC सप्लाई।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन। It's hot.
8: 89.6
0: मिर्ची।

वेल, इस मजेदार गाने के बाद थोड़ी सी काम की बातें भी की जाए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और खुश तो बहुत होंगे आप आज। भैया 29th of July है, हो सकता है आज ही आपकी सैलरीज खनक गई होगी आपके अकाउंट्स में। अगर नहीं तो वही एक दो दिन की बात है, उसके बाद क्या, एक्सचेंज रेट का सही इस्तेमाल कीजिए और बस पैसे भेजिए। देखिए आज का एक्सचेंज रेट ये कह रहा है दैट 1 रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीस 26.29, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीस इज एट 76.35। बांग्लादेशी टाका की बात करें तो 1 रियाल के बदले मिल रहे हैं 33.98, श्रीलंकन रुपीस वेयर एज इज एट 92.26, और 1 रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं नेपाली रुपीस 41.96। ये थे आज के एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, और खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 1 एंड ओनली 89.6 machine one, it's hot.

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
2: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
3: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
4: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
5: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
6: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना राइट अराउंड मिर्ची। और इस खूबसूरत से गाने के बाद में टाइम होता है कि भाई आपको थोड़ा सा और कंफ्यूजन में डाले, और वो कैसे भाई, थोड़ी देर पहले जब मैंने लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट खेला था, हाँ थोड़े से आप कंफ्यूज हो गए थे। अब लेकर आई हूँ मेरा दूसरा गेम, जिसे मैं कहती हूँ पहचान कौन, और आपने गैस करना है कि भाई अभी आफरीन किसकी आवाज सुना रही है। भाई देखो यार, गेम्स खेलना ना, दिमाग को थोड़ा सा जोर डालो ना, इस तरह से इसे एक्सरसाइज ही माना जाता है ब्रेन की, क्योंकि आप अपना दिन अभी शुरू करने वाले हो अच्छी तरह से, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज ही क्यों ना करवा दें, है ना। तो चलिए, रेडियो सेट्स की वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से ये आवाज सुनो और पहचानो कि भाई ये है कौन।
2: They always say, you know, opposites attract, and I'm sure they do. In my case, they definitely did. I mean, look at her beauty scale, look at mine. The opposites definitely attract. But there has to be, you know, a milan of certain values, I think. And I think you'll always end up finding that. Family to me is the most important thing.
1: All right. किसकी आवाज है ये आपने बताना है मुझे। 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर, फटाफट से यहाँ पर आकर बताइए भाई आवाज ये थी तो किसकी थी। आपके इंतजार कर रही हूँ आपके मैसेजेस का। तब तक के लिए अगला गाना जो बजा रही हूँ ना, लेट मी टेल यू माई फ्रेंड्स, धुरंधर मूवी आई, बहुत सारे गाने आए, लेकिन आई थिंक सो दिस सॉन्ग इन दिस मूवी इज माई फेवरेट आउट ऑफ ऑल द सॉन्ग्स। कौन सा है ये, जुबिन नौटियाल की आवाज में
3: मैं ना रहा
1: है।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: जिनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
2: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए?
3: अलार्म लगा है। ओ कॉल, हेलो जिनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
2: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
1: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Well, देवरी का ये गाना अमित त्रिवेदी की आवाज, वन ऑफ माई फेवरेट कंपोजर्स. और यार एक जमाना था यार, बहुत अच्छी म्यूजिक बनाते थे ये. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और हाँ जी, गेम शेम खेल रहे थे हम यहाँ पर. थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था मैंने आपको. अब जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं ना, तो उनको बता दूं मैं एग्जैक्टली आफरीन क्या खेल रही थी. एक मैंने आवाज़ सुनाई थी, एक सेलिब्रिटी की इंटरव्यू था और आपने बस आवाज़ गेस करनी थी, दैट्स ऑल. तो चलिए मैं फिर से आपको आवाज़ सुनाती हूँ और आप अब भी गेस कर सकते हो. नंबर पहले नोट कर लीजिए, 5000 1896 मेरा व्हाट्सएप नंबर है. यहाँ पर मैसेज भेज सकते हो आप, और जब मैसेज भेजोगे ना अपना नाम जरूर टाइप करिएगा.
1: They always say, you know, opposites attract, and I'm sure they do. In my case, they definitely did. I mean, look at her beauty scale, look at mine. The opposites definitely attract. But there has to be, you know, a milan of certain values, I think. And I think you'll always end up finding that. Family to me is the most important thing.
0: देखो यार, द बैकग्राउंड म्यूजिक आई थिंक सो गेव अवे द आंसर. फिर भी आप अगर कंफ्यूज है कि ये शाहरुख खान है या मैडी है, तो ये दोनों नहीं है यार. कौन है ये जो मैसेज किया ना कि ये किसकी आवाज है, वो मैं बता दूं. उन्होंने अपना नाम यहाँ पर लिखा है. हाँ, फलक नाम है इनका, और उन्होंने बिल्कुल सही गैस किया है कि आफरीन ये आवाज तो अभिषेक बच्चन की है. सो भाई बिल्कुल सही जवाब है, दिस इज इंडीड अभिषेक बच्चन की आवाज. एंड आई डोंट नो व्हाई कि आप लोग को इतना कंफ्यूजन क्यों आई कि आवाज पहचानने के लिए. काफी काफी क्या कहते हैं वो, इतनी आइकॉनिक आवाज तो है, बच्चन साहब के सुपुत्र है, तो थोड़ी सी तो बच्चन साहब की आवाज की झलक तो होगी इनकी. वेल, अगला गाना जो मैं बचाने वाली हूँ, यस, अभिषेक बच्चन की मूवी कुछ ना कहो से, एंड शंकर महादेवन की आवाज सुजाता भट्टाचार्य का साथ. एंड आई लाइक दिस सॉन्ग. मुझे याद नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि आपको ये गाने की वीडियो याद है कि नहीं. ऐश्वर्या राय का साथ,
2: आज मैंने जो देखा,
0: आई लव द डांस इन द सॉन्ग.
2: मैंने
0: याद आ रहा है कुछ,
2: चमका है किस्मत.
0: एंजॉय दिस ट्रैक. माइक से दिल तक आफरीन के साथ अनमिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
0: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ, एक चीज लेनी होती है, पांच लेके आ जाता हूँ, क्या करूँ?
1: ये तो गलत है। अगली बार मिर्ची वाले
0: साथ। हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
0: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ, एक चीज लेनी होती है, पांच लेके आ जाता हूँ, क्या करूँ?

0: Mirchi Mornings.
1: Mirchi Mornings. It's hot.
2: 89.6
3: Mirchi One. It's hot.
1: Mirchi Mornings. Brought to you by Kim's Health Medical Center.
3: Mirchi. Fresh Maal.
4: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वेल, अरिजीत सिंह की खूबसूरत आवाज में ये गाना हमें सुनने मिल गया है, एंड इनफैक्ट आपको बड़े पर्दे पर भी सुनने मिलेगा ये गाना। मतलब अरिजीत सिंह की आवाज में गाने अब बड़े पर्दे पर थोड़े से शायद कम या ना ही सुनने मिले, एंड दिस इज वन ऑफ दोस ट्रैक्स। आवारापन 2 का ये गाना, जहां पर ये मूवी रिलीज होने वाली है, वैसे तो 14 अगस्त को है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे कतर में 13 अगस्त तक रिलीज हो जानी चाहिए। इमरान हाशमी की मूवी साथ देते हुए दिशा पटनानी, एंड इनफैक्ट स्टारकास्ट में यहाँ पर शबाना आजमी भी है। सो वेल, आई यू इमरान Hashmi fan, by the way, if yes, drop in your message 5001896 WhatsApp number है, वहाँ connect करते हैं। Hello, shalom, good morning, good morning, सब कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त मिला लेते हैं। मिर्ची घड़ी में हो रहे हैं सुबह के 9:04, एंड अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है। इस गाने के उस पार मैं मिलूंगी आपको बहुत सी बातें लेकर और मिर्ची इट्स हॉट।
2: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.

देखो वैसे तो मैं अगले वीकेंड तक यानी वीकेंड पर आने वाले इवेंट्स की बातें करती हूँ, लेकिन अब लेकर आई हूँ कि यार बचे हुए साल में क्या कुछ होने वाला है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और देखिए भाई, अब तो ऑलमोस्ट हमारा आधे साल से ज्यादा खत्म हो चुका है, और जब रेस्ट ऑफ द ईयर बचा है, कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जो आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हो? जैसे शैल कथारा हंटिंग एंड फाल्कन एग्जीबिशन, ये सितंबर के महीने में होने वाला है, और सितंबर के महीने में ही दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन होने वाला है। और जनरली ना ये वाले इवेंट है तो ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन, बॉलीवुड के कोई बड़ा स्टार आता ही आता है। करीना कपूर आ चुकी है, आलिया भट्ट आ चुके हैं, ऐश्वर्या राय है, इस बार देखते हैं कोई आता है या नहीं। उसके अलावा अगर बात करें बड़े बड़े इवेंट्स में हमारे कतर की, तो कतर बोट शो भी नवंबर में लाइंड अप है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन इवेंट आई थिंक सो एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड इज शकीरा का कॉन्सर्ट। ये एक्चुअली स्टेडियम 974 में होने वाला है 18th of November को। एंड फॉर ऑल द स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट, भाई फुटबॉल के बगैर हमारा साल तो इनकम्प्लीट सा ही रहेगा, राइट? सो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप वो भी होने वाला है November 19 से लेकर 13th of December तक। एंड देन F1 कतर एयरवेज ग्रैंड प्री, ये भी तो होने वाला है नवंबर में। सो यू नो यार, बहुत सारी चीजें लाइंड अप है, और दिसंबर के महीने तक तो मैं आई भी नहीं हूँ। कतर बलून फेस्टिवल वो भी होने वाला है, कतर T100 ट्रायल थॉन भी होने वाला है, और दोहा फोरम 2026। सो ऑल यू आई कैन सी इज भाई, साल अब तक खत्म कहाँ हुआ है, अब तो यार शुरू ही हुआ है। इवेंट्स का सिलसिला तो यहाँ पर अब बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga. हेलो।
2: हाय शिवानी।
1: हाय।
2: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार?
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
1: फेवर,
2: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
2: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3
1: करता हूँ।
2: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी।
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
1: नहीं नहीं,
2: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ुकु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: गोइंग होम, मेक इट रिवॉर्डिंग विद कल्याण ज्वेलर्स।
5: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
6: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
3: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: और इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी से बहुत ज्यादा है ये आप खुशियां ना अपने बच्चों को दे ही दो। क्योंकि बस ये आखिरी कुछ दिन बचे हैं कदरटॉय फेस्टिवल के, तो बस जाइए भाई डीसीसी में। इतनी अच्छी सी रौनक जो लगी है वहां पर कदरटॉय फेस्टिवल की, वहां पर जाकर अपने बच्चों को ये खुशियां तो जरूर दे ही सकते हो। और ठीक है, अगर आज नहीं कल नहीं, अगर आप नहीं जा सकते हो, देन आई थिंक सो यू शुड हेड टू कलवर्स। ये कतारा में है, कतारा विलेज में। एंड जो कलवर्स है ना, वो मेरे ख्याल से सबके लिए है। एक ऐसी रंग बिरंगी दुनिया जो आपके हाथ में है, बेरंग दुनिया को रंग बिरंगी करने के लिए। अब ये कैसा है, क्या है, इट्स हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इट्स एन इमर्सिव वर्ल्ड। तो बस वो एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि मैं भी नहीं देखी हूँ अब तक के, और ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है। तो जब जाऊँगी, जब महसूस करूँगी, खेलूँगी, देखूँगी, तब मैं आपको एकदम विस्तार में बता सकती हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए तो कतरटॉय फेस्टिवल तो अपना कितने साल से चलते आ रहा है, 31 जुलाई तक ये चलने वाला है। सो आज 29th है, आज कल परसों भाई बुक करके जाओ टिकट्स, क्योंकि लास्ट के कुछ दिन है, शायद बहुत सारे लोग जाना चाहेंगे। सो डोंट मिस आउट ऑन कतरटॉय फेस्टिवल 2026 जो डीसीसी में हो रहा है। मैं हूं आफरीन आपके साथ राइट हियर माइक्स ये दिल तक, अरिजीत सिंह की आवाज में अगला गाना है। हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है कभी, गाना सुन लो, महसूस कर लो कि कैसा होता है। Enjoy it on Mirchi, it's hot.

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned.
1: यार बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
2: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
1: क्यों? वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
2: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
1: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
2: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
1: ओह, मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस।
2: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
3: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
4: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
5: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
6: बहुत कुछ होगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: सोनू निगम की आवाज़ और ये गाना बहुत ही खूबसूरत लगता है। वन ऑफ द रीजन बीइंग कि यार इसके वर्ड्स, इसके जो लिरिक्स है वो बहुत ही प्यारे हैं। और जहाँ लिरिक्स की बात होती है, अल्फाज की बात होती है, कुछ अल्फाज जो होते हैं वो महसूस किए जाते हैं। और इस वक्त पर जनरली मैं मेरी डायरी से कुछ अल्फाज ऐसे लेकर आती हूँ। कभी शायरी होती है, कभी कविताएँ होती हैं, कभी नज़म होती है, बस या कभी कुछ चंद अल्फाज, बस वर्ड्स ही होते हैं जो एक खूबसूरत सा एक थॉट देते हैं हमारे दिन के लिए। तो आज की जो शायरी नहीं कही है, कह सकते हैं बस आज का ख्याल कुछ ऐसा है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी।
0: तो अर्ज किया है, रात गुजर गई थी लेकिन सवेरा नहीं था, रात गुजर गई थी लेकिन सवेरा नहीं था, वो ख्वाब तो देखा मगर मेरा नहीं था, किस कदर तन्हा था मैं उस महफिल में, किस कदर तन्हा था मैं उस महफिल में, सब अपने थे पर कोई मेरा नहीं था। बस इसी खूबसूरत से ख्याल के बाद एक अगला गाना आपके लिए शंकर महादेवन की आवाज में, माइक से दिल तक आप शीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: कुछ खुश

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोर्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
3: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे वो सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
2: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वाज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bordal Bollywood Bollywood Bollywood Bordal
1: Only on Mirchi It's Hot
4: Nahi Basanti in kutto ke samne mat nachna।
5: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है,
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, Badshah ki awaaz mein she move it like that, and it's time for me to move it from here. भाई गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और देखिए भाई, चार घंटे गुजर गए हैं. सुबह 6 बजे से आपको एंटरटेन कर रही हूँ भाई. कुछ नाश्ता वाश्ता करने का टाइम आ गया है मेरा. वेल, टॉकिंग अबाउट ब्रेकफास्ट यार, मतलब आप मुझे बताइए कि आप ब्रेकफास्ट वाले इंसान हो या फिर आप ब्रंच टाइप के हो. मतलब आजकल ये नया कुछ चल रहा है ना फैशन के, भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग की जाती है. तो उस हिसाब से मुझे ये बताइए कि आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बिलीव करते हो, फॉलो करते हो, या फिर नहीं भाई हम लोग हैं हमको पहले अच्छा तगड़ा ब्रेकफास्ट चाहिए, भले ही वो अंडा पराठा हो या उफ बस बस और चीजें मुझे नहीं कहनी है इसके आगे, क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है और फिलहाल मुझे भूख भी बहुत लग रही है. सो लेट मी गो एंड फिगर आउट कि क्या आज मुझे खाना है. तब तक के लिए आपको कहती हूँ मैं अलविदा. आई होप आप लोगों ने अपनी दिन की शुरुआत बहुत जबरदस्त तरीके से की होगी और बस कल मिलेंगे बहुत सारी एनर्जी के साथ. वीकेंड आ गया है दोस्त, तब तक के लिए टाटा सायोनारा. और अगले गाने का इंतजार कीजिएगा. मिर्ची इट्स हॉट.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: बच्ची हेल्पलाइन।
1: बोल दामिनी बोल। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: वो ना वो पराठे गरम करते वक्त मैं कितना भी ध्यान रखूं वो जल ही जाते हैं और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मैं क्या करूं?
1: क्या करूं का क्या मतलब है? जलने वाले तो जलेंगे, तू मम्मी को बोल के किचन में ना खड़ी रहे। सिंपल है।
2: साले का खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले का।
3: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: is on a roll at present.
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: भाई इन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस के अलग अलग जॉनराज दिखाए हैं फिलहाल, एक तो प्रीतम एंड पेड्रो में एंड दूसरा इनकी रिसेंटली रिलीज हुई सीरीज मुसाफिर कैफे। वेल इफ यू आर अ फिल्मची आपने गेस कर लिया होगा दैट मैं बात कर रही हूँ विक्रांत मस्सी के बारे में, जिन्होंने अपनी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड ग्लोबल रिलीज व्हाइट मूवी की डबिंग कम्प्लीट कर ली है। सो द मूवी इज अ थ्रिलर जिसमें ह्यूमन ड्रामा है सेट अगेंस्ट अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड और ये इंस्पायर्ड है दुनिया के लॉन्गेस्ट एंड डेडलीएस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो इंटरनल वॉर ऑफ कोलंबिया हुआ था उससे। एंड माइंड यू इस वॉर को रिजॉल्व किया था एक इंडियन स्पिरिचुअल मास्टर ने अपने स्पिरिचुअल विजडम से और ये फिल्म इसी कहानी को ग्लोबल स्केल पे लेकर आ रही है एंड दैट इज द रीजन इस मूवी में सिर्फ इंडियन स्टार्स नहीं इंटरनेशनल कास्ट एंड क्रू भी हैं। मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं एस एड फिल्म मेकर मोंटो बस्सी एंड इट इज बीइंग बैक्ड बाय लीडिंग फिल्म मेकर सिद्धार्थ आनंद, पीस क्राफ्ट पिक्चर्स एंड महावीर जैन। माइंड यू ये फिल्म मल्टीपल इंटरनेशनल एंड इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज होगी बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर एंड विक्रांत मस्सी जिस हिसाब के एक्टर हैं आप इनसे एक्सीलेंस से और कुछ कम तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। बाकी आपने प्रीतम एंड पेड्रो और मुसाफिर कैफे अभी तक नहीं देखी देन आई मस्ट से कि आपको अपनी वॉचलिस्ट में ये दो सीरीज तो जरूर से जरूर डालनी चाहिए। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Cabana, Mirci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La viva la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello, Benji.
2: हाँ जी
3: ये एक सेकंड ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
2: आप, आपके घर में कोई नहीं है?
3: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड।
2: अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए।
3: नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर। आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटो, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
2: नहीं, हाँ। इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
3: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ, इधर आओ। देखो मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका,
2: तो उतार लीजिए।
3: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
2: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
3: अच्छा, ये बेब है। एक सेकंड,
2: देखिए सुसू करा होगा उसने। देखिए,
3: हाँ, सुसू करा। चल,
2: उतार दीजिए।
3: एक सेकंड, उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही है। क्लैपिंग करो।
2: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर।
3: मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
2: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
3: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा, जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। The Ultimate Dhoom फ्रेंचाइजी के फोर्थ इंस्टॉलमेंट का हिस्सा नहीं बन रहे रणबीर कपूर। सो बेसिकली रिपोर्ट्स हैड इट दैट सरजी जो हैं इस मूवी में एक एंटागनिस्ट बोले तो विलन के रूप में नजर आएंगे। इनिशियली इस मूवी को अयान मुखर्जी डायरेक्ट करने वाले थे, बट जब वॉर 2 नहीं चली तो आदित्य चोपड़ा ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, अब तो हमें फिल्म मेकर चेंज करना होगा। हाउएवर उस वक्त रणबीर कपूर इस फिल्म का हिस्सा थे, बट लेटर ऑन थिंग्स डिडंट वर्क आउट अकॉर्डिंगली और अब रणबीर कपूर इज नो लॉन्गर डूइंग धूम 4। तो देखते हैं कि इस अल्टीमेट फ्रेंचाइजी के अल्टीमेट चोर के तौर पे अब हमें कौन मिलने वाला है। यामी गौतम, शुजॉय घोष की कहानी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बन रही हैं। हां जी, इस फिल्म के फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट को तो हमने खूब पसंद किया, बट अब तीसरे इंस्टॉलमेंट में विद्या बालन नहीं होने वाली, बट अब इस थर्ड इंस्टॉलमेंट में एक नई कहानी आएगी और उस नैरेटिव को सेट करने के लिए यामी गौतम लीड रोल निभाएंगी। बाकी शुजॉय घोष डायरेक्टोरियल इस फिल्म के बारे में बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। प्रभास की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म स्पिरिट का हिस्सा नहीं है कटरीना कैफ। कुछ टाइम से इस फिल्म को लेकर काफी सारे स्पेकुलेशन आ रहे थे कि भाई मेरी क्रिसमस यानी 2024 में जो ये फिल्म आई थी उसके बाद शी इज गोना मेक अ कमबैक विद द मूवी स्पिरिट, बट नाउ इट हैज बीन कंफर्म्ड दैट कटरीना कैफ इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। ऑल द मूवी में प्रभास के साथ साथ तृप्ति डिमरी और विवेक ओबेरॉय भी पिविटल रोल्स निभाते नजर आएंगे, एंड इट इज सेट टू रिलीज ऑन द 5th of March नेक्स्ट ईयर। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। स्टे ट्यून्ड, इट्स

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नॉटी माइंड, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्मची गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। सो बेसिकली द ड्रिल इज, आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम में अपना नंबर भेजना होता है, जिसके बाद मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। एंड इसके थ्रू हमें पता चलता है कि भाई आप कितने बड़े वाले फिल्मची हैं। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे कौन है?
3: मैं प्रथा बोल रही हूँ।
0: हाय प्रथा, कैसे हो आप?
3: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल बढ़िया। तो क्या आप आज के मिर्ची फिल्मची गेम की शुरुआत करना चाहेंगी?
3: हाँ हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
0: ओके, लेट्स बिगिन। रवीना टंडन पीली साड़ी में बारिश वाला डांस किस फिल्म में करती हैं?
3: मोहरा।
0: मोहरा में तू चीज बड़ी है मस्त मस्त कौन करता है?
3: अक्षय कुमार। एक और परेश रावल भी रहता है।
0: अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें उनको चाइना के एक वॉरियर का री इनकारनेशन समझते हैं?
3: चांदनी चौक टू चाइना
0: में जुड़वा कैरेक्टर किसका है?
3: दीपिका पादुकोण
0: की फिल्म जिसमें वो अपने ऑनर के लिए खुद को जौहर कर देती हैं?
3: पद्मावत
0: में राजपूत राजा कौन है?
3: शाहिद कपूर
0: की फिल्म जिसमें वो एक अनलकी आर्किटेक्ट है जो फिल्म की हीरोइन को अपना लकी चांद समझते हैं?
3: किस्मत कनेक्शन
0: की फीमेल लीड?
3: विद्या बालन
0: की फिल्म जिसमें वो अमिताभ बच्चन की मम्मी बनी है?
3: पा
0: में असली पापा कौन है?
3: अभिषेक बच्चन
0: की फिल्म जिसमें पेटीकोट बाबा कौवा बिरयानी खाते हैं?
3: नहीं पता।
0: कोई बात नहीं, बट यहाँ तक बहुत मस्त गेम खेला है यार आपने।
3: थैंक यू। आंसर क्या है लेकिन?
0: अब वो आपको बता दिया तो आगे का गेम कैसे कंटिन्यू होगा, बट कोई नहीं, आपको ये टैग तो दे दूं।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो बाबू मोशा इस फिल्मची गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
3: हाँ, लगता ही है। ही इज द काइंड ऑफ डायरेक्टर, एज एन एक्टर यू हैव टू रियली ट्रस्ट हिम, क्योंकि ही इज हिज आइडियाज कम फ्रॉम where you'll never understand. And if you start justifying it, जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे कि you know, तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी, तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी. But you have to trust him.
2: ये थी प्रियंका चोपड़ा talking about विशाल भारद्वाज on मिर्ची It's hot.
0: Bollywood Bold Bollywood Bollywood Bollywood Bold
1: Only on मिर्ची It's hot.
4: Hello Sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं,
5: office के toilet में toilet paper white नहीं yellow लगाओ, profit आएगा.
4: Relative से advice लो तो कहते हैं,
6: काम को time दो, 25 घंटे काम करो, dark circles होंगे तो future bright होगा.
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ promotion fund के लिए, जिसके लिए आप 50% equity ले सकते हो.
7: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070 7687.

0: खेलो मगर प्यार से। श्रुति
1: श्रुति मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। आपके दिमाग के घोड़े किधर किधर दौड़े, उनको लगाम लगाइए, वापस लाइए। बेसिकली द ड्रिल इज, आपको मेरे इंस्टा के डीएम में अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ और इस गेम की शुरुआत करती हूँ। और आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे थी प्रिथा, बट शी गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ हैं पुष्पाल जी। तो सर चलिए आपके लिए मैं सवाल फिर से रिपीट कर देती हूँ। अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसमें पेटीकोट बाबा कौवा बिरयानी खाते हैं।
2: रन।
0: रन की फीमेल लीड
2: भूमिका चावला।
0: भूमिका चावला की फिल्म जिसमें उनसे हीरो को ऑब्सेसिव प्यार हो जाता है।
2: या तेरे नाम।
0: तेरे नाम में राधे कौन है।
2: सलमान खान।
0: सलमान खान की फिल्म जिसमें वो टांगों के बीच में टॉवल डाल के डांस करते हैं।
2: मुझसे शादी करोगी।
0: मुझसे शादी करोगी में सलमान को किससे शादी करनी है।
2: प्रियंका चोपड़ा।
0: प्रियंका चोपड़ा की फिल्म जिसमें वो मॉडल बनी है।
2: फैशन। फैशन।
0: फैशन में एक डायलॉग है, ये कौन करता है।
2: कंगना रनौत।
0: कंगना रनौत की फिल्म जिसमें उनका पति अदरक के जैसे हर जगह से बढ़ता रह रहा है।
2: तनु वेट्स मनु रिटर्न्स
0: में उनका पति कौन है।
2: आर माधवन।
0: आर माधवन की फिल्म जिसमें वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है लेकिन उनको फोटोग्राफी पसंद है।
2: थ्री इडियट्स
0: में प्रिंसिपल की बेटी कौन है।
2: करीना कपूर।
0: यस, करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो अपनी फेवरेट है।
2: शाहिद कपूर के साथ है मूवी।
0: हाँ जी।
2: जब भी मैट।
0: एंड द वे वी मेट ओवर हियर ऑन दिस गेम इज अल्टीमेट, इसलिए आपको ये टैग तो जरूर देना है।
3: मिर्ची फिल्मची।
0: अब देखो, इस गेम को सुनने के बाद अगर आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा फोमो में जा रहा है, देन वरी नॉट, ये गेम कल फिर से वापस आएगा। राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स हॉट।

0: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
0: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।

0: का हमसे नहीं देखा जाएगा।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
3: देखो टाइम एंड अगेन हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कोई ना कोई ऐसी फिल्म जरूर लेकर आती है जो ना सिर्फ सेंसर बोर्ड को बट ऑडियंस को भी अनकंफर्टेबल कर देती है, बट कभी कभी जरूरी हो जाता है यार। और अचानक से ये भारी भरकम बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि येस्टर ईयर्स यानी पुराने जमाने की कुछ ऐसी मूवीज की बात करने वाली हूँ थ्रू माई पांच का पंच लिस्ट, जो आज के डेट में अगर सेंसर बोर्ड के पास जाती तो भैया कैंची चाकू सब कुछ चल जाता। तो चलिए लिस्ट की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले अबाउट द मूवी जाने भी दो यारों, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 1983, डायरेक्टेड बाय कुंदन शाह। और इस सटायरिकल कॉमेडी में नसीरुद्दीन शाह, रवि बासवानी, ओम पुरी, पंकज कपूर, सतीश शाह, सतीश कौशिक, शक्ति बारवे और नीना गुप्ता जैसे अमेजिंग एक्टर्स थे। बाकी ये फिल्म डाइव्ड इनटू द थीम्स ऑफ करप्शन इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी, साथ ही ब्राइबरी, ब्लैकमेल, मर्डर और न्यूज मीडिया सब कुछ को एक डार्क सटायर के साथ, वेल टाइम्ड गैग्स के साथ परोसा गया था। एंड फैसिनेटिंगली ये मूवी प्रोड्यूस की थी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जो आज की डेट में भाई इसी मूवी से काफी नाखुश हो जाती। वैसे इस लिस्ट में और भी चार फिल्मों की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
4: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक।

0: Fermici.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La virtua la burga.
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
4: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
4: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
3: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
4: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
3: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, कैसे पैदल आ रहे हो?
4: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी चौड़ी तो रोड होगी।
3: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
4: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
3: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
4: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
3: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
4: आगे वो भी आगे। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
3: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
4: आगे वो भी आगे, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ला रहा हूँ,
3: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
4: किसकी डेथ हो गई सर?
3: मेरे भाई की डेथ हो गई।
4: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नहीं है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
3: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
4: मैं कहाँ रहा हूँ,
3: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
4: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
3: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, एक तो परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो भी।
4: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
3: यार।
4: थैंक यू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
8: दोनों मिलेगा, मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
10: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: बड़ा अनकंफर्टेबल फील करा देती है यार।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नो नो नो नो नो बाबू मोशाय, अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी औरत किसी लड़की की बात कर रही हूँ, देन यू आर रॉन्ग। आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टेन फिल्म्स जो गाहे बगाहे आती हैं और हमें अनकंफर्टेबल करके चली जाती हैं। हाँ देखो, पहले के जमाने की कुछ फिल्में इस लेवल पे कंटेंट के साथ आई जो उस वक्त तो पास हो गई, लेकिन आज के डेट में अगर गलती से वो फिल्म रिलीज होती तो भैया त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया जाता। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ उन्हीं फिल्मों की बात कर रही हूँ जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी जाने भी दो यारो। अब नंबर दो पे बात करते हैं राम तेरी गंगा मैली के बारे में, जो 1985 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाई राज कपूर, जिसमें मंदाकिनी थी, राजीव कपूर थे और दिव्या राणा थी। सो ये कहानी है एक महिला की जिसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, वो बहुत कुछ सफर करती है, एंड द फिल्म इग्नाइटेड कंट्रोवर्सी ओवर सीन्स जहां पे गंगा को ब्रेस्ट फीड करते हुए दिखाया गया है या फिर उनको एक व्हाइट साड़ी में नहाते हुए दिखाया गया है। सो अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर राज कपूर, उन्होंने इन सारी चीजों को डिफेंड किया बाय सेइंग दैट इट इज नॉट सेक्सुअल एंड मैनेज्ड टू गेट द फिल्म अप्रूव्ड विदाउट एनी मेजर कट्स। बट इमेजिन आज के डेट में राम तेरी गंगा मैली अगर आती तो उसका क्या हाल होता। खैर लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर तीन पे बात करते हैं अबाउट द मूवी बैंडिट क्वीन, जो 1994 में रिलीज हुई थी, अ बायोग्राफिकल एक्शन एडवेंचर फिल्म जिसको डायरेक्ट किया था शेखर कपूर ने, और इसमें सीमा विश्वास, मनोज बाजपेयी और निर्मल पांडे जैसे अमेजिंग एक्टर्स थे। ये मूवी जो है ना वो फूलन देवी की लाइफ पे बेस्ड है, एंड उस वक्त ये मूवी फूलन देवी के कंसेंट के बिना बनी थी। एंड ऑनेस्टली जिस लेवल पे उनके ट्रॉमा को डिपिक्ट किया गया था इन द मूवी वॉज रियली डिस्टर्बिंग। बट सोचो उस वक्त इस मूवी के ऊपर कोई केस कोई पॉलिटिक्स नहीं चली, लेकिन आज अगर ये फिल्म बनती वो भी बिना कंसेंट के तो क्या हाल होता उस मूवी मेकर का। अभी मेरी इस लिस्ट में और भी दो फिल्मों की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आपको काफी डिस्कम्फर्ट से भर सकती है ये।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बाबू शाय, मैं कुछ ऐसी फिल्मों की बात कर रही हूँ जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफी टाइम पहले रिलीज हुई, और आज की डेट में अगर आप उन मूवीज के कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दोगे ना, तो आपको रहेगा कि हाइला, ये मूवीज पहले सेंसरशिप को पास कैसे कर गई, इन पे कैंचियां नहीं चली, इन पे बैन नहीं लगा। एंड ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में जरूर से जरूर आएंगे। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात कर रही हूँ जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी जाने भी दो यारो, नंबर दो पे रान तेरी गंगा मैली, नंबर तीन पे वी टॉक्ड अबाउट बैंडिट क्वीन, अब नंबर चार पे लेट्स टॉक अबाउट बॉम्बे द मूवी दैट रिलीज इन द ईयर 1995 डायरेक्टेड बाय मनी रत्नम। एंड ये जो मूवी है इसमें बॉम्बे बिफोर एंड ड्यूरिंग द बॉम्बे रायट्स की कहानी है, जहां इंटर रिलीजन लव स्टोरी को दिखाया गया है। और इस मूवी में है अरविंद स्वामी, मनीषा कोराला, सोनाली बेंद्रे, प्रकाश राज जैसे अमेजिंग एक्टर्स। जस्ट इमेजिन आज जिस जोन में जी रहे हैं हम, जिस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं हम, उसमें अगर इस लेवल की फिल्म रिलीज होने को आती तो क्या ही बवाल मच जाता। इनफैक्ट दिस मूवी वॉज डिलेड बाई द 1995 महाराष्ट्र इलेक्शंस, एंड एक पुलिस कमिश्नर ने तो ये भी कह दिया कि दिस मूवी वुड नेवर सी द लाइट ऑफ डे। स्टिल द फिल्म मैनेज्ड टू गेट क्लियरेंस एंड वॉज सेट टू रिलीज विद ओनली माइनर कट्स। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नंबर पांच पे वन ऑफ माय सुपर डुपर फेवरेट फिल्म्स रंग दे बसंती के बारे में, जो साल 2006 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जिसमें आमिर खान थे, सोहाली खान थी, सिद्धार्थ थे, शर्मन जोशी थे, कुणाल कपूर, आर माधवन, वहीदा रहमान थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, द मूवी वॉज वेल रिसीव्ड, इट वॉज ऑल्सो क्लियर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जबकि इस मूवी में ऑन स्क्रीन असैसिनेशन दिखाया गया था डिफेंस मिनिस्टर का। हम पहले के टाइम में ज्यादा ब्रॉड माइंडेड और एक्सेप्टिंग थे क्या? कभी कभी तो यही लगता है यार। वैसे आप मेरी इस लिस्ट में और कोई ऐसी ही फिल्म ऐड करना चाहो, देन फील फ्री टू डू दैट। वो करने के लिए यू विल हैव टू कनेक्ट विद मी ऑन माय फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम। आई एम देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
4: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
5: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
3: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल।
2: बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल। ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
7: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट,
8: एंटरटेनमेंट। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन।
9: 89.6
10: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: तो
1: खेलो मगर प्यार से।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। आपके दिमाग के घोड़े किधर किधर दौड़े, उनको लगाम लगाइए, वापस लाइए। बेसिकली द ड्रिल इज, आपको मेरे इंस्टा के डीएम में अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ और इस गेम की शुरुआत करती हूँ। और आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे थी प्रिथा, बट शी गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ हैं पुष्पाल जी। तो सर चलिए आपके लिए मैं सवाल फिर से रिपीट कर देती हूँ। अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसमें पेटीकोट बाबा कौवा बिरयानी खाते हैं।
4: रन।
1: रन की फीमेल लीड
4: भूमिका चावला।
1: भूमिका चावला की फिल्म जिसमें उनसे हीरो को ऑब्सेसिव प्यार हो जाता है।
4: या तेरे नाम।
1: तेरे नाम में राधे कौन है।
4: सलमान खान।
1: सलमान खान की फिल्म जिसमें वो टांगों के बीच में टॉवल डाल के डांस करते हैं।
4: मुझसे शादी करोगी।
1: मुझसे शादी करोगी में सलमान को किससे शादी करनी है।
4: प्रियंका चोपड़ा।
1: प्रियंका चोपड़ा की फिल्म जिसमें वो मॉडल बनी है।
4: फैशन। फैशन।
1: फैशन में एक डायलॉग है इवी वी वी वी वी वी, ये कौन करता है।
4: कंगना रनौत।
1: कंगना रनौत की फिल्म जिसमें उनका पति अदरक के जैसे हर जगह से बढ़ता रह रहा है।
4: तनु वेट्स मनु रिटर्न्स
1: में उनका पति कौन है।
4: आर माधवन।
1: आर माधवन की फिल्म जिसमें वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है लेकिन उनको फोटोग्राफी पसंद है।
4: थ्री इडियट्स
1: में प्रिंसिपल की बेटी कौन है।
4: करीना कपूर।
1: यस, करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो अपनी फेवरेट है।
4: शाहिद कपूर के साथ है मूवी।
1: हाँ जी।
4: द वे वी मेट
1: ओवर हियर ऑन दिस गेम इज अल्टीमेट, इसलिए आपको ये टैग तो जरूर देना है।
2: मिर्ची फिल्म जी।
1: अब देखो, इस गेम को सुनने के बाद अगर आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा फोमो में जा रहा है, देन वरी नॉट, ये गेम कल फिर से वापस आएगा राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है मेरी। टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
1: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: only on 89.6 Mirchi One. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: फ्रेश माल।
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।

0: भाई जेलर्स की इस सीक्रेट इन्फॉर्मर ने तो इनमेट्स की वाट लगा रखी है।
1: ओटीटी एंड चिल
0: मिर्ची पिटी उन्नो आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रियलिटी शो लॉकअप, जिसमें अपूर्वा है जेलर्स की सीक्रेट इन्फॉर्मर और उनके बारे में ये चीज इनमेट्स को पता नहीं है। और वो रीसेंट एपिसोड में जिस हिसाब से बाकी के इनमेट्स पे चढ़ी है, भाई साहब, मतलब जिस हिसाब से बंदी ने लैला एके वरुण को उसके मिसोजिनिस्टिक व्यू पॉइंट को लेके कन्फ्रंट किया, वो समथिंग जिसको देख के मेरे दिल को बहुत मेजर लेवल पे ठंडक पड़ी है। लिटरली शी हैज स्पोकन ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वुमन आउट देयर। और अपूर्वा की बैशिंग एक तरफ, लेकिन जो एक चीज मुझे नहीं समझ में आ पा रही अभी तक इज शिवांगी एंड हर्षद का इक्वेशन। भाई आप बोल रहे हैं कि आप सिर्फ फ्रेंड्स हैं और हर्षद के जाने के बाद आप उसका चादर, उसकी तकिया सब उठा के अपने पास लेकर जाते हो। ऑनेस्टली मेरा कोई दोस्त ऐसा करेगा ना तो मैं तो क्रीप आउट हो जाऊंगी यार। और ऊपर से लोगों को निकाल रहे हैं फिर बुला रहे हैं, मतलब हर्षद गया था उसको समझा बुझा के अब वापस लेकर आ गए हैं। नाउ आई लिटरली वांट टू सी कि भाई इस बंदे का गेम प्ले क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ जिस हिसाब से सारे के सारे इनमेट्स ने राम कपूर को कॉल आउट करना शुरू किया है, वो उनके पलटू मार एटीट्यूड के बारे में हो, वो लड़कियों को बेवजह बेटा बेटा बोल के चुम्मा चाटी करने वाली चीज हो, एवरीबॉडी इज एक्चुअली मेकिंग अ पॉइंट कि उनकी ये हरकतें सामने आए। बाकी आप अगर ये शो फॉलो कर रहे हो तो आपका फेवरेट इनमेट कौन है, डू लेट मी नो अबाउट दैट मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे मुझसे कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Burka, burka. Na fiat bala burka. Milci burka.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहा है?
3: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सर आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: हाँ, सर कुछ गा के सुनाएगा.
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको
3: भेज. वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
2: कोंडा में कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया.
2: सर साहब
3: सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा.
2: सुन ले बात मेरी,
3: बात
2: सुन पहले बात.
3: हाँ सर.
2: और बंद करिए बीन जो बजा रहा है ये बंद कर रहा
3: सर. बोलिए
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
3: जी सर.
2: और जिसने भी ये नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका.

0: Mirchi Morga, na vid ke saath, only on Mirchi. It's hot. Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders or driver ki job. For bright future, call now 3100813.
1: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
2: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

वेल, इस मजेदार गाने के बाद थोड़ी सी काम की बातें भी की जाए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और खुश तो बहुत होंगे आप आज। भैया 29th of July है, हो सकता है आज ही आपकी सैलरीज खनक गई होगी आपके अकाउंट्स में। अगर नहीं तो भाई एक दो दिन की बात है, उसके बाद क्या, एक्सचेंज रेट का सही इस्तेमाल कीजिए और बस पैसे भेजिए। देखिए आज का एक्सचेंज रेट ये कह रहा है दैट 31 रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.29, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.35। बांग्लादेशी टाका की बात करें तो 31 रियाल के बदले मिल रहे हैं 33.98, श्रीलंकन रुपीज वेयर एज इज एट 92.26, और 31 रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं नेपाली रुपीज 41.96। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, और खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला वन एंड ओनली 89.6 machine one, it's hot.

0: It's hot.
1: भैया जरा एक प्लेट ओवरथिंकिंग लगाना।
2: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
1: मिर्ची बिटी उन्नो आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति और आज डिस्कस कर रही हूँ ओवरथिंकर्स के बारे में, जिसमें दो कैटेगरी समझ में आई है। फर्स्ट आर द पीपल जो ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताई तेरी ये वाला गाना गाते हैं ओवरथिंकिंग के लिए। ये कुछ भी काम कर रहे होंगे, इनके बैकग्राउंड में दिमाग इनका ऑन रहता है और ओवरथिंकिंग मोड चलता ही रहता है नॉन स्टॉप। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी हो ये स्केड्यूल वाले ओवरथिंकर्स हैं, मतलब ये पूरे दिन अपने आप को समझाते हैं कि नो I will not let my overthinking take over me. मैं control करूंगी उसको, ठीक है? मैं पूरे दिन अपना काम करूंगी 100% focus के साथ, लेकिन रात के 10 बजे के बाद 2 घंटे मुझे चाहिए मेरे overthinking zone में। और उस वक्त गलती से मुझे 0.1% की disturbance दे दी ना किसी ने, बेटा अगले दिन तुम्हारे murder को लेकर overthinking करूंगी मैं। वैसे आप इन दोनों में से किस कैटेगरी के हैं? आई बिलोंग टू द सेकंड वन, तभी तो इतने अच्छे से पता है ना इनके बारे में। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। Yes, you guessed it right, सलमान खान की बात हो रही है, क्योंकि उनकी फिल्म टाइगर जिंदा है याद आई ना मुझे, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय अली अब्बास जफर। बाकी हमें तो पता है कि सलमान खान एक्टर के साथ साथ और भी बहुत कुछ है। हेलो, नेगेटिव डायरेक्शन में जाने के लिए नहीं बोल रही, मैं बेसिकली उनके आर्टिस्ट वाले अंदाज की बात कर रही हूँ यार। और उनका ये आर्टिस्ट जो है वो बाहर निकला था टाइगर जिंदा है के सेट्स पे। सो आपने वो गाना सुना है ना, दिल दिया गल्ला, उसमें जो कटरीना कैफ की पेंटिंग बनाते दिख रहे हैं सलमान खान, एक्चुअल में वो पेंटिंग उन्होंने ही बनाई है। हाँ, ये खुद अली अब्बास जफर ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था, जिसमें मेरा मन हो रहा है कि बोलूं कि जितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि मैं एक्टिंग तक नहीं कर सकता, देख लो मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। खैर, अगर आपकी कोई फेवरेट फिल्म है और आप उसके बारे में कुछ ट्रिविया जानना चाहो, देन प्लीज मेंशन दैट फिल्म टू मी मेरे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके। आई एम देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: जिनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
3: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए।
4: अलार्म लगा है। ओ कॉल, हेलो जिनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
3: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
2: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
6: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: He is on a roll at present.
1: Shruti. मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: भाई. इन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस के अलग अलग जॉनराज दिखाए हैं फिलहाल. एक तो प्रीतम एंड पेड्रो में एंड दूसरा इनकी रिसेंटली रिलीज हुई सीरीज मुसाफिर कैफे. वेल इफ यू आर अ फिल्मची आपने गेस कर लिया होगा दैट मैं बात कर रही हूँ विक्रांत मस्सी के बारे में, जिन्होंने अपनी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड ग्लोबल रिलीज व्हाइट मूवी की डबिंग कम्प्लीट कर ली है. सो द मूवी इज अ थ्रिलर जिसमें ह्यूमन ड्रामा है सेट अगेंस्ट अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड और ये इंस्पायर्ड है दुनिया के लॉन्गेस्ट एंड डेडलीएस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो इंटरनल वॉर ऑफ कोलंबिया हुआ था उससे. एंड माइंड यू इस वॉर को रिजॉल्व किया था एक इंडियन स्पिरिचुअल मास्टर ने अपने स्पिरिचुअल विजडम से और ये फिल्म इसी कहानी को ग्लोबल स्केल पे लेकर आ रही है. एंड दैट इज द रीजन इस मूवी में सिर्फ इंडियन स्टार्स नहीं इंटरनेशनल कास्ट एंड क्रू भी हैं. मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं एस एड फिल्म मेकर मोंटो बस्सी एंड इट इज बीइंग बैक्ड बाय लीडिंग फिल्म मेकर सिद्धार्थ आनंद पीस क्राफ्ट पिक्चर्स एंड महावीर जैन. माइंड यू ये फिल्म मल्टीपल इंटरनेशनल एंड इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज होगी बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर. एंड विक्रांत मस्सी जिस हिसाब के एक्टर हैं आप इनसे एक्सीलेंस से और कुछ कम तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते. बाकी आपने प्रीतम एंड पेड्रो और मुसाफिर कैफे अभी तक नहीं देखी देन आई मस्ट से कि आपको अपनी वॉचलिस्ट में ये दो सीरीज तो जरूर से जरूर डालनी चाहिए. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ. स्टे ट्यून्ड इट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
1: ओ माय बॉय, तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ?
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: सुबह सुबह का टाइम हुआ करता था और स्कूल बस में सब चुप होते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल असेंबली के लिए न्यूज़ जो ढूंढनी होती थी।
1: सारा ज़माना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. और हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसा भी तो एक टाइम हुआ करता था यार। आज की मॉर्निंग्स हम कहते हैं कि वी मस्ट गो स्लो, आराम से कॉफी इंजॉय करो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन बचपन की मॉर्निंग्स हमारी बहुत तूफानी हुआ करती थी यार। भागम भाग में तैयार होना, भागम भाग में नाश्ता करना, भागम भाग में बस पकड़ना, और फिर फाइनली जब बस में बैठ जाते थे तो सब शांत। क्यों? क्योंकि हम सब ना न्यूज लिख रहे होते थे। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में ऐसा होता था कि नहीं होता था, लेकिन हमारे स्कूल में डेफिनेटली होता था कि यार हम सबको ना एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी पड़ती थी। वो डायरी हमेशा हमारी पॉकेट्स में रहा करती थी, एंड उस डायरी के अंदर रोज सुबह हमें न्यूज लिखकर ले जानी होती थी स्कूल, ताकि असेंबली में अगर अचानचूक किसी को बुला लिया जाए, जो कि होता भी था हमारे साथ, हमें न्यूज बोलनी आनी चाहिए ऑन द स्टेज। और इसीलिए सब अपने आप को बचाते हुए हर रोज सुबह बस के अंदर न्यूज ही लिख रहे होते थे, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल और एक लोकल। तब ना ये सिस्टम बहुत बोर लगा करता था, बहुत चिड़ होती थी, और दिमाग यही कह रहा होता था कि यार ये रोज सुबह क्या क्या टंडे लगाने पड़ते हैं यार, न्यूज़पेपर घर से लेकर आओ और फिर बस में बैठ के न्यूज टीपो। हमारे घर में ना दो न्यूज़पेपर आते थे इसी चक्कर में, एक जो मैं स्कूल लेकर जा पाऊं जब मुझे न्यूज लिखनी होती थी बस के अंदर, और दूसरा जो घर पे रह जाए ताकि बड़े पढ़ पाए। लेकिन ये जो चिड़न कुड़न बलन थी ना, और जो बोरियत होती थी इन सारे कामों को करते हुए, आज समझ आ रहा है कि ये अच्छी चीज थी यार। कसी जो न्यूज अपडेट रखने की आदत मुझे आज है ना, वो यहीं से तो आई है। वैसे ना लाइफ में और भी ऐसी कई सारी आदतें हैं जो हमें तब तो बहुत ही इरिटेटिंग लगा करती थी, क्योंकि तब करना पड़ता था क्योंकि हम छोटे हैं, लेकिन आज जब वो हमारी लाइफ में एक अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है और डिसिप्लिन लेकर आ रही है ना, तो लगता है कि हाँ यार कुछ आदतें अच्छी होती हैं। बताऊंगी आपको थोड़ी देर में उन आदतों के बारे में, लेकिन अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालने की बारी आ चुकी है। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा।

0: Mirchi. Iskaba la puskaba la sakaba la. Rambala. Murga, murga. La vizba la murga.
1: Mirchi, murga. Hello.
2: Hi, Shivani.
1: Hi.
2: Hi, Shivani. Congratulations. Mubarak ho. Gaadi khareed li.
1: Thank you very much. Aap kaun bol rahe hain?
2: Shivani, kaun si gaadi khareedi hai? Mujhe to abhi bataya. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार?
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा.
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है. अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है. तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
2: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3. अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी.
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना. शिवानी मेरी बात सुनो, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ोबी शराब, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
1: कुकड़ुकु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट, इट्स पटाक.
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष.
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन. 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: रात में कपड़े प्रेस करके, बैग जमा के, सारी तैयारी करके सोना, ये हमारी बचपन की आदत थी। और जब रात में ये सारे काम करने पड़ते थे ना, आधी नींदों में थके हुए होते थे फिर भी, क्योंकि अगले दिन स्कूल है, तो बहुत आलस आता था यार। मम्मा इतना बोल बोल के, पुश कर करके हमसे काम करवाती थी ताकि अगली सुबह हम स्कूल जाने के लिए लेट ना हो जाए। लेकिन ये आदत ना आज बड़ी अच्छी लगती है।
2: आज की
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और बचपन की कुछ आदतें जो तब तो हमें लगता था कि बड़ी फोर्स्ड है, हम बड़े बेमन से किया करते थे, लेकिन आज लगता है कि यार अच्छा हुआ जो ये सब सीख गए, काम में आ रही है। उनमें से एक यही है, रात में सुबह की तैयारी करके रख लेना सारे कामों की। और उसमें से स्पेशली कपड़े प्रेस करने वाली जो आदत थी हमारी, ये बड़ी सही काम आ रही है यार आज के टाइम पर। मतलब मैं तो अब उन लोगों को भी बड़ा प्रेस करती हूँ जो मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन खुद भी इस आदत को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग इस आदत को भूल भी जाते हैं। लेकिन आज भी जो लोग इस आदत पर अपना पूरा ध्यान फरमाते हैं, वो मेरा ध्यान भी ले जाते हैं। और ऐसे लोगों को देखकर समझ में आता है, हाँ ये इंसान जो है ना, ये बड़ा डिसिप्लिन्ड है। So, जो कहां की चीज कहां जोड़ के हम इंसान की पर्सनालिटी ट्रेट निकाल लेते हैं कि ये इंसान डिसिप्लिन है क्योंकि ये रात में अपने कपड़े प्रेस करके सोता है। और हाँ, ये बात सच्ची है कि मुझे वो लड़की पसंद है जो रात में अपने सुबह की तैयारी कर लेते हैं। इनफैक्ट पता है, आज भी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगली सुबह की जब तैयारी कर रही होती हूँ ना, रात में अपने कपड़े वपड़े प्रेस करके रख रही होती हूँ, तो ऐसा फील आ रहा होता है जैसे कि स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। आज तक ये फील कभी नहीं आया है कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे ऑफिस जाने की या कहीं बाहर जाने की तैयारी करनी पड़ रही है। आज भी स्कूल वाला ही फील आ रहा होता है, जो फील शायद आपको भी समझ आए, जो सुबह भी आता है। अगर कभी ऐसा होता है कि हम अपने रूटीन से पहले सुबह सुबह उठ जाते हैं किसी काम के चलते, तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल जाने के लिए उठे। यू कैन टेक द किड आउट ऑफ द स्कूल, लेकिन यू कैन नॉट टेक द स्कूल आउट ऑफ दैट किड, जो आज भी हमारे अंदर कहीं बसा हुआ है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आजकल जो हम हमेशा अपने साथ एक बॉटल रखते हैं कैरी करते हुए, हमें लगता है कि हम बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं. नो वेज, ये आदत हमारे बचपन की है.
2: आज की बात 90s के साथ.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ये आदत हमने स्कूल से सीखी है यार, जब रोज बॉटल भरकर ले जाना हमारे लिए लाजमी हुआ करता था. इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा लगता था कि यार ये बॉटल और कैरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो लटकाने वाली बॉटल होती थी, कैरी करने वाली बॉटल नहीं हुआ करती थी. हमेशा एक बॉटल हमारे गले में लटकी रहती थी, कंधे पे लटकी रहती थी, या कैसे भी करके उसे हमें कैरी तो करना ही होता था. तब बड़ा जोर आता था, लेकिन अब लगता है कि यार ये जो स्किन के हाइड्रेशन के लिए आदत पड़ी है ना, ये बड़ी सही पड़ी है यार. हमें लग रहा होता है कि हमने बॉलीवुड से ये सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन नहीं बाबा, हमने ये आदत जो है ये बचपन में ही सीख ली थी. टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड स्कूल में टीचर्स कब से कहा करती थी यार. और अब जो हमें ये बोझ नहीं लगता है ना कि हमें बॉटल भी कैरी करनी है, वो इसी वजह से, क्योंकि बचपन में हम इसके ऑलरेडी आदि और इत्यादि हो गए थे. बॉलीवुड ने सिर्फ और सिर्फ इन बॉटल्स को थोड़ा फैंसी कर दिया है, लेकिन ये जो आदत है ना, इसका क्रेडिट बॉलीवुड को नहीं दे सकते बॉस, बचपन को देना जरूरी है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. Mirchi, it's hot.
0: Midday Mohabbat.
3: Presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: Every breath you take, every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever and ever.
1: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
3: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
0: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ, एक चीज लेनी होती है, पांच लेके आ जाता हूँ, क्या करूँ?
1: ये तो गलत है, अगली बार से एक ही लाना, क्योंकि पांच लेकर पकड़े जाओगे तो मॉल वाले चोर समझकर मारेंगे।

0: ये जादू नहीं है तो और क्या है यार, मतलब वाकई में छोटी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती है, लेकिन ये जो छोटी रातें लंबी होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में नहीं होती है, ये एक्साइटमेंट में भी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमें ट्रैवल करना होता है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है ना, तो अगली सुबह के चक्कर में हम रात भर नहीं सो पा रहे होते हैं और वो रात जो है वो अपने आप लंबी हो जाती है। या तो एक्साइटमेंट होता है या तो एंजाइटी होती है, और मुझे तो कभी कभी दोनों ही होता है, और उस चक्कर में मेरी भी छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि मुझे मोहब्बत है, लेकिन नहीं, आई एम नॉट कैचिंग फीलिंग्स, आई एम जस्ट अबाउट टू कैच अ फ्लाइट। दैट्स द रीजन कि मेरी छोटी रात लंबी हो गई है।
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब मेरे यारा, मान ना मान करो गानों की पहचान, दो गानों के मिक्सेस को आपके लिए चला देती हूँ, आपको सुना देती हूँ, और आपको बताना होता है कि ये जो दो धुनें आपने सुनी कौन से गानों की है। तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं। बस जी, अब आपको डीएम करना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि इन दो गानों के नाम क्या हैं। और स्टे ट्यून रहिएगा विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। It's hot.
1: Midday Mohabbat presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vie est la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello, Benji.
1: हाँ जी,
2: ये एक सेकंड, ये बहन जी, अब आपके पड़ोस में रहते हैं, ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है, वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
1: आप, आपके घर में कोई नहीं है?
2: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं, तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड बेटी, चुप।
1: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
2: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ, एक सेकंड। आली है, मामा आएंगी, मामा आएंगी, एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगे एक सेकंड सर। आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटो, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा, आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
1: नहीं, इसने डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है?
2: एक सेकंड, इधर आओ, हाँ इधर आओ, देखो, मामा आ गई, चीजी लाई, हाँ डायपर गीला है बहन जी इसका,
1: उतार लीजिए उसको।
2: एक सेकंड रुकिए, ये इसके गले में अटक रहा है डायपर, एक सेकंड।
1: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
2: अच्छा, ये बेब है, एक सेकंड,
1: देखिए सुसु करा होगा उसने, देखिए।
2: हाँ सुसु ही करा है, सुसु करा है, चुप,
1: उतार दीजिए,
2: एक सेकंड, उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही है, क्लैपिंग करो,
1: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
2: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं, रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
1: और मैं पागल हूँ, ओह नो।
2: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: No Entry, एक ऐसी फिल्म जिसका नाम तो No Entry था, लेकिन सबको इस फिल्म को देखने के लिए एंट्री चाहिए थी.
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, ये फिल्म इतनी मजाकिया और इतनी मजेदार थी ना, मतलब जिंदगी में कुछ भी बवाल चल रहा हो, इस फिल्म को देखते देखते सबने अपनी हंसी निकाली और उस बवाल को उस हंसी में उड़ा दिया है. लेकिन आपको इस फिल्म में वो वाला सीन तो डेफिनेटली याद होगा जहां पर फरदीन खान, अनिल कपूर एंड सलमान खान एक ही क्लिप से लटक गए थे एक के बाद एक. ओरे बाप रे बाप, मतलब दिस सीन इज अ मिक्स ऑफ एंजाइटी एंड ह्यूमर. मुझे भी एंजाइटी हो रही थी इस चीज को लेकर कि ये कहीं गिर ना जाए यार, और ह्यूमर भी इतना था यार इस सीन के अंदर कि थोड़ी देर के लिए टेंशन लेने के बाद मैं हंसने लग जाया करती थी कि यार ये क्या ही कर रहे हैं. लेकिन बिहाइंड द सीन्स की बात ये है कि ये सीन जितना मजाकिया देखने में लग रहा था ना, उतना शूट करने में मजाकिया नहीं था, बिकॉज दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी टफ सीन टू शूट, क्योंकि इनको वाकई में ये सीन एक क्लिफ से लटकते हुए शूट करना पड़ रहा था. एंड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए रिग केबल्स अटैच करनी जरूरी थी, बिकॉज वो जो टेरेन था वो बड़ा स्टीप था. अब ये सारे सीन्स शूट करने के बाद ये जब सीन निकल के आया तो भाई फुल पैसा वसूल था ये सीन. और एक मजे की बात सुनो, ये जो सीन जिस स्पॉट पे शूट हुआ था ना फुकेट में, जहां पर ये तीनों के तीनों एक क्लिफ से लटके हुए थे, इस फिल्म के बाद और इस फिल्म की सक्सेस के बाद इस सीन का नाम ही नो एंट्री स्पॉट रख दिया गया था, अंटिल अ सुनामी वॉश्ड दैट स्पॉट अवे. हाँ, वो स्पॉट कभी हुआ करता था मगर आज नहीं. मगर हाँ, इस स्पॉट को आज भी हम फिल्म में जरूर देख सकते हैं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: मिडडे मोहब्बत प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज. फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सल्लू भाई के डोले तो बड़े हैं ही हैं, साथ ही साथ उनका दिल भी बहुत बड़ा है यार।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And जब No Entry the movie was being shot ना, at that time, अनिल कपूर of course was the main lead of the film, everybody knew. लेकिन फिर भी सलमान खान ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ करी, because जब बोनी कपूर ने उनको ये स्क्रिप्ट दिखाई, तो सलमान खान को ये स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो किसी ना किसी तरीके से इस फिल्म का हिस्सा बनना चाह रहे थे। और जबकि उनका रोल छोटा था, फिर भी उन्होंने अपने इस रोल को निभाने के लिए मुझसे शादी करोगी की शूट एंड नो एंट्री की शूट में बहुत जगल किया। मतलब कभी वो यहां होते थे, कभी वो उस सेट पे हुआ करते थे। एंड इन फैक्ट जो क्रू थी इस फिल्म की, वो भी हमेशा ऐसी रहती थी कि यार कभी भी सल्लू भाई आ सकते हैं अपनी शूट करने के लिए, अपनी शूट कंप्लीट करने के लिए, उनको जहां मौका मिलेगा वो आ जाएंगे। तो वो हमेशा स्टैंड बाय पे रहा करते थे। इनफैक्ट सलमान खान वॉज द वन, जब नो एंट्री की शूट के डिलेज हो रहे थे, तो उन्होंने बोनी कपूर को कहा कि यार पैसों के बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना काम और अपनी फिल्म खत्म करने के बारे में बात करो, और पैसा वैसा जो भी है ना वो हम देख लेंगे। यानी कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो फाइनेंशियल बैकअप की जरूरत थी, वो उस वक्त सलमान खान ने बोनी कपूर को जरूर दिया था। वही अगर बात की जाए फरदीन खान की, तो ये बड़ी मजेदार वाली चीज है यार। मतलब फरदीन खान को कास्ट तो कर लिया था मूवी के लिए, लेकिन जब इनिशियल शूट्स हुए तो अनीस बाजमी को समझ में आ गया था कि यार फरदीन खान के कॉमिक टाइमिंग जो है ना वो थोड़ी डिलेड है, उनके रिएक्शंस थोड़े लेट आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉमेडी एक्टर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फरदीन खान को अनीस बाजमी ने इतना स्पेस दे दिया कि उन्होंने उनके कैरेक्टर को ही उस हिसाब से डिजाइन कर दिया, ताकि फरदीन खान की एक्टिंग के साथ उनके कैरेक्टर के रिएक्शंस जो हैं वो ट्यून इन हो पाए। एंड जो फरदीन खान का कैरेक्टर ऑन स्क्रीन ऐसे दिखाया गया है ना कि स्लो है और स्लो रिएक्शंस देता है, वो बेसिकली उनकी एक्टिंग के टोन से एडजस्ट करते हुए उनके कैरेक्टर को बना दिया गया था। इसे कहते हैं अकल। रिकास्ट करने से तो यही अच्छा था कि कैरेक्टर को ही कास्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ट्यून कर दिया जाए। और इसी के चलते फरदीन खान की कॉमेडी फिल्मों में भी दुकान खुल गई यार। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
3: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे तो वो सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे में लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
2: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वॉज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: Bollywood Boulder, Bollywood, Bollywood, Bollywood Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Hello, Sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: बोल दामिनी बोल। बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: वो ना, वो पराठे गरम करते वक्त मैं कितना भी ध्यान रखूं, वो जल ही जाते हैं। और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मैं क्या करूं?
0: क्या करूं का क्या मतलब है? जलने वाले तो जलेंगे, तू मम्मी को बोल के किचन में ना खड़ी रहे। सिंपल है।
2: खोपड़ी तोड़।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बिपाशा बसु जो नो एंट्री में इतना छा गई थी, क्या आपको पता है वो नो एंट्री में होने ही नहीं वाली थी।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, बिपाशा बसु का जो कैरेक्टर था, दैट वाज सपोज टू बी प्लेड बाय प्रियंका चोपड़ा, लेकिन फिर हुआ ये कि प्रियंका चोपड़ा को बैकआउट करना पड़ गया, क्योंकि वो मुझसे शादी करोगी की शूट में बिजी थी और नो एंट्री की शूट पे नहीं आ पा रही थी, तो उन्होंने जो एडवांस भी लिया था वो भी उनको वापस करना पड़ गया था। लेकिन बिपाशा बसु की जैसे ही एंट्री हुई, एक्चुअली हुआ ये कि इतनी लास्ट मिनट एंट्री हुई ना, कि वो एक वेकेशन से लौटी थी और उन्होंने वजन बढ़ा लिया था। अब ये जो कैरेक्टर उनको प्ले करना था, वो तो हम सबको ही पता है कि बड़ा हॉट एंड सेक्सी कैरेक्टर था। इनफैक्ट इन एन इंटरव्यू कहीं जॉन अब्राहम को मैंने ये भी बोलते हुए सुना था कि बिपाशा जो थी वो बीमार भी पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनके वर्कआउट्स और डाइट्स जो हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे थे, यानी कि हुआ था सोने पे अभागा। लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बिपाशा बसु ने पूरी मेहनत करी और पूरी कोशिश करी कि वो कामयाब हो पाए, एंड इनफैक्ट वो कामयाब हुई भी। आज भी हमें बिपाशा बसु का वो कैरेक्टर इन नो एंट्री स्टिल याद है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, और मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिडडे मोहब्बत प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आप पहला रहा हूँ।
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
2: मैं कहाँ पर हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बचपन से हम इस गाने को गुनगुनाते आए हैं और आज इसकी धुन की सच्चाई सामने आ गई है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: वेल, त्रिदेव का ये गाना।
3: Oh, yeah.

के म्यूजिक डायरेक्टर हैं बीजू शाह, हैज बीन कॉपीड फ्रॉम दिस गाना। अब आप भी सोच रहे होगे कि क्या यार सारा, दोनों धुने एक के बाद एक बजा दी, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली दो अलग अलग जगहों से उठाई हुई धुने हैं। एक तो जो मैंने आपको सुनाई वो त्रिदेव की थी, एंड ये जो म्यूजिक जहां से इंस्पायर्ड है, रादर कॉपीड है, इज मायमी साउंड मशीन का द रिदम इज गोना गेट यू। यार वैसे तिरछी टोपी वाले ने तो शौक से एज अ फैशन स्टेटमेंट ये टोपी पहनी थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर बीजू शाह ने तो पूरी ऑडियंस को ही टोपी पहना दी। वाह, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
1: Stay tuned.
2: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
3: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
4: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
5: खूब मिलेगा,
6: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिड डे मोहब्बत
1: प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज फ्रॉम सेवरी टू स्वीट एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज
2: सारा जमाना सारा का दीवाना
3: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: लकी अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज में दिस गाना इज फ्रॉम द फिल्म सुर जो कि कैसेट के साइड बी का चौथा गाना है
5: मिर्ची 90s कैसेट
4: आ भी जा ये गाना मुझे बहुत खूबसूरत लगता है यार हालांकि गाना थोड़ा सैड है मेलैंकली है इस गाने के अंदर लेकिन ये गाना जो है ये पॉजिटिविटी की बात कर रहा होता है क्योंकि इस गाने में यही गाया गया है कि आ भी जा ए सुबह आ भी जा और रात को कर विदा दिल रुबा आ भी जा यानी कि हम जो वो टनल के एंड में एक लाइट ढूंढ रहे होते हैं ना दिस गाना इज समवेयर अराउंड दैट फैक्ट ओनली अब ये सुबह ना किसी के लिए मोहब्बत हो सकती है ये सुबह किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये सुबह किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ जीने की एक वजह हो सकती है ये डिपेंड करता है कि इंसान कौन सी सिचुएशन में और उस सिचुएशन के हिसाब से उस इंसान के लिए ये सुबह क्या मायने रखती है इस गाने में हालांकि मोहब्बत के बारे में बात की गई है और तभी ये कहा गया है कि मैं हूँ गगन तू है जमीन अधूरी सी मेरे बिना रात को कर विदा दिल रुबा भीजा लेकिन वही वाली बात है कि हम लाइफ में अभी फिलहाल किस चीज को रोमांटिसाइज कर रहे हैं क्या ऐसी चीज है जो हमें चाहिए और तहे दिल से हम उस चीज के लिए दुआएं कर रहे हैं मेरी दुआ भी आपके लिए है कि आपकी वो दुआ कबूल हो जाए और जाते जाते यही गाना हो जाए क्या बोलते हो ये गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ एंजॉय द ट्रैक एंड मैं अब कह देती हूँ कि हम है रही प्यार के लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मिल जाइएगा मुझे ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा Stay tuned to Mirchi, 'cause it's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
3: हाँ, लगता ही है। ही इज द काइंड ऑफ डायरेक्टर, एज एन एक्टर यू हैव टू रियली ट्रस्ट हिम, क्योंकि ही इज हिज आइडियाज कम फ्रॉम वेयर यू नेवर अंडरस्टैंड। एंड इफ यू स्टार्ट जस्टिफाइंग इट, जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया जैसे कि यू नो तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी, बट यू हैव टू ट्रस्ट हिम।
2: ये थी प्रियंका चोपड़ा टॉकिंग अबाउट विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
5: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
8: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
0: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का। इट्स हॉट शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। मिर्ची फ्रेश माल।
1: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: भैया देखिए, चश्मे पे आने वाले पानी से इंसान को लगता है कि उसकी दुनिया के सामने न जाने कैसी तबाही चल रही, फिर वो पोछता है तो सब ठीक लगने लगता है। लेकिन हम कहते हैं, सूरज चाचू तुमने क्यों हमसे इतना बदला लेने का सोच रखा है? कल तो हम पढ़ रहे थे बारिश होने वाली है, लेकिन फिलहाल पसीनों की बारिश नजर आ रही है। 4:05 के करीब आ रहे टाइम।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: तो आ गया मसमोला गौरव लेकर बातों की दुकान, जिसका नाम है शाम शानदार। ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन सबसे पहली बात उस बात पे जिसके बड़े सपने सजो रखे थे मैंने। पिछले दिनों चैलेंज भी किया था, अगर सूरज चाचू दम है तो एक बार बारिश करा के दिखाओ। फिर कतर मेट्रोल डिपार्टमेंट ने कहा भी कि आज और कल बारिश के चांसेस है। आज तो रेन कहीं से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन क्या पता रेन कल टुमारो कम अगेन ऐसा हो जाए। वेल फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूँ, जबरदस्त ह्यूमिडिटी हम सबको घेर रही है एंड तैयार रहना है अगले कुछ दिनों तक। अब इस ह्यूमिडिटी के साथ जीने की अपनी कोशिश को जारी रखना है। याद रखिए, अगर आप चश्मा पहनते हैं परेशानी आपकी ज्यादा है, कोई नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो मसमोला गौरव आ गया, बातों से जो ठीक कर पाएंगे, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है इंसान अपनी बातों की वजह से ही माला पहन लेता है, और अपनी बातों की वजह से कहीं वहीं जूतों की माला भी पहन लेता है। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए, अपना भी आपा ना खोए और सामने वाले का आपा भी ना खोए। 89.6 मिर्ची वाली था। बंधुओं को सेलिब्रेट करने का डे भी तो आ रहा है, फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त। हाँ जी।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Navijat bala burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: हेलो मिस्टर गौतम,
2: कौन बोल रहे हैं?
3: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन का सर नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: सर कुछ गाके सुनाएगा?
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
3: वही सर, ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा।
2: सुन ले बात,
3: मेरी बात
2: सुन, पहले बात सुन।
3: हाँ सर।
2: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है। सर बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर।
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें.
2: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
4: कम है के?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

शायद बचपन में इस जगह हम अपना सबसे ज्यादा समय गुजारते हैं। घर के बाद बात कर रहा हूँ मैं स्कूल की, और स्कूलों को लेकर कतर बहुत सजग है, और इसीलिए अब कतर में कुछ और नए स्कूल बन रहे हैं जिसका इंस्पेक्शन का काम भी पूरा हो गया, और हमें यह पता लगा है कि 80% से ज्यादा 14 स्कूल बन चुके हैं। #974974 हम आपको बता दें कतर एक बड़ी उड़ान की तरफ बढ़ रहा है और वहां पर 14 नए स्कूल की बातें हो रही हैं, और इसके लिए अशगाल के प्रेसिडेंट हिज एक्सीलेंसी इंजीनियर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अलमीर साहब ने हाल ही में एक इंस्पेक्शन किया और उन्होंने देखा कि जो 14 नए स्कूल्स बन रहे हैं उनका काम कितना कंप्लीट हुआ है, और उन्होंने जो बात आकर कही है इंस्पेक्शन के बाद 80% काम कंप्लीट हो चुका है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये स्कूल्स बन रहे हैं, और ये स्कूल्स 10,000 नए स्टूडेंट्स के लिए दरवाजे खोल देंगे और उन्हें एजुकेशन शिक्षा मिलेगी, और इसी से दुनिया में हम सब कुछ बदल सकते हैं। यस, क्योंकि तालीम सिर्फ किताबों तक नहीं होती दोस्त, ये किसी मुल्क के फ्यूचर को बदलने की ताकत रखती है और उसकी तकदीर बदलती है जब वो अपने एजुकेटेड बच्चों को लेकर आगे बढ़ता है, और कतर उसमें यकीन रखता है। इसीलिए हर बदलते साल के साथ या नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, और स्टूडेंट्स को कैसे अकोमोडेट किया जाए इसके लिए नए स्कूल भी बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले पूरी हुकूमत को सलाम, अशगाल की सारी टीम को सलाम जो लगातार अपना काम मन लगाकर करती है, और कई बार तो हमें भी शॉकिंग लगता है कि एक महीना पहले जिस स्कूल के आसपास हमने सिर्फ क्रेन देखे थे वहां अचानक से एक बड़ी बिल्डिंग बनने लगती है और तेजी से उसका काम कंप्लीट हो रहा है। इसके लिए वाकई में काबिले तारीफ है वो सारे मजदूर भाई जो इसमें काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में जब बच्चे यहां पढ़ेंगे तो हम ये याद रखें कि वो फ्यूचर बदलने की ताकत रखेंगे। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

अटक, लौंडो के दिल पटक पटक, ससे जाए अटक अटक, आता माझी सटक सटक, बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। Come on baby, kick it, kick it, काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: वाला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

0: गफूर वेल गाना तो बहुत खूबसूरत और उससे भी ज्यादा स्टाइल में बनाया गया ये गाना। लेकिन फिलहाल हमारे कतर में सब कुछ अच्छे से हो, आगे बढ़ता रहे, यही हम हमेशा दुआ करते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक तरह से एक बिजनेस गाइडेंस ऑफिस अब जो है मिनिस्ट्री ने हमारे कतर में लॉन्च किया। यस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक बिजनेस गाइडेंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस एज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना दिया है। जो इन्वेस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये एक तरह से बहुत बड़े राहत की बात है। यस, यहाँ पर उन्हें सपोर्ट मिलेगा, एडवाइस मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा कि वो किस तरह से अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करें कतर में, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी। एंड ये बेसिकली इन्वेस्टर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेगा एंड कतर की जो बिजनेस की ग्रोथ है, जो सेक्टर ऑफ बिजनेस में हम ग्रोथ देखना चाहते हैं, उसमें बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वेल, ये एक बहुत बड़ी चीज है। रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग एक्सप्लेनिंग कंपनीज एस्टैब्लिशमेंट, जहां पर इन्वेस्टर्स की क्वेरीज को एक तरह से डिनोट किया जाएगा एंड साथ ही साथ उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चाहिए अपने बिजनेस को एज एन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, यहां पर जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब कुछ एस्टैब्लिश कर दिया गया है। और ये बता दूं मैं आपको कि संडे टू थर्सडे सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये टाइमिंग डिसाइड कर दी गई है। यस, बता दें संडे टू थर्सडे बिटवीन 8 AM to 1 PM मिनिस्ट्रीज हेडक्वार्टर इन लोसेल सिटी, ये उनके ऑफिस में आने का टाइम होगा। याद रखिए, अगर बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज हैं आपके पास, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, उसको लेकर कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट है, सब क्लियर किए जाएंगे एट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जहां पर अब बाकायदा ये ऑफिस एस्टैब्लिश किया गया ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। अब हमारे वहां और नए नए एंटरप्रेन्योर बनेंगे, आई एम श्योर उनके लिए चीजें आसान होने जा रही हैं, जो यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर कर पैसा बनाना चाहते हैं। बाबू भैया, पैसे पैसे होंगे, मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट एफएक्स रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल July 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
2: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
3: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा.
4: बहुत कुछ होगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.

0: सब तेरा, तो दे दो ना भाई हमको, तुम्हारा बैंक अकाउंट ही तो चाहिए बस। हाँ वो कोई नहीं देगा, खैर मुझे चाहिए भी नहीं, जो मुझे चाहिए वो है आपसे प्यारी प्यारी बातें करने का टाइम, और आप दे देते हैं। लेकिन मौसम भैया एकदम कहर मचाएंगे।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: कौन कहता है कि आसमानों में बादल नहीं है लेकिन बारिश नहीं है, ये जरूर कहेंगे। कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा था कि आज और कल बारिश के चांसेस हैं, तो ये रेन कल भी हो सकती है, दैट इज 30th of July। इन सब के बीच में आपको बता दूं दिन का मैक्सिमम तापमान यानी कि टेम्परेचर पहुंचा 41, मिनिमम विल बी अराउंड 31, ह्यूमिडिटी एट 41% एंड हवाओं की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहते हैं, बारिश के चांसेस तो दिखाई दे रहे हैं, अब हो ना हो अपनी जगह है, लेकिन एक बारिश जरूर होती है, वो भी एंटरटेनमेंट की बारिश जो आप मिर्ची पे लूट सकते हो। मिर्ची इट्स हॉट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: உங்களுக்கு.
1: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
2: यू नो, आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, पहली मम्मी नहीं बन सकती. तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी. अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है. तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं. यू नो, मतलब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब
1: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं. चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
3: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
5: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more, all at one place. Call 5572-7387 today.
6: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइंस हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. TNC's
7: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
8: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
9: बार बार.
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
9: 89.6
8: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है मेरी। टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
1: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वे जुनू हमारा फन 2 का ये गाना और मुझे 2007 की मेमोरीज में जाना एक जैसा लगता है। मैं किसी को बता रहा था कि आवारापन वो पहली सीडी थी जो मैं अपने मिर्ची स्टूडियो बनारस में खरीद कर लेकर आया था और सिस्टम में उसे मैंने इंट्रोड्यूस किया था। यस, उस जमाने में सीडी लेकर, 2007 की बात बता रहा हूँ, सीडी लेकर आया था आवारापन की और यही गाने को मैंने वहाँ पर, आवारापन के जो गाने थे उन्हीं गानों को मैंने सिस्टम में डाला था जैसे आपको सुना पाऊँ। फिलहाल मिर्ची का टाइम 5:05।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: अब आपको वो कहानी बाद में कभी सुनाऊंगा, फिलहाल के लिए आगे बढ़कर ये सुनाना है जो इस घंटे आपको खेलने देता हूँ मैं। आज की आवाज आप जरा ध्यान से सुनिए।
3: तो आए तो बोले कि एक लेडी गुजर गई है और ये पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने आपके नाम कर दिया। साउथ बॉम्बे में उनकी बिल्डिंग्स थी ये वो, और टोटल प्रॉपर्टी 150 करोड़ की होगी।
1: 5000 1896 पर आपको बताना है ये किसकी वॉइस है जो मैं यहाँ सुना रहा हूँ।
3: तो आए तो बोले कि एक लेडी गुजर गई है और ये पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने आपके नाम कर दिया। साउथ बॉम्बे में उनकी बिल्डिंग्स थी ये वो, और टोटल प्रॉपर्टी 150 करोड़ की होगी।
1: अरे बाबा, आप अभी भी इतना सोच रहे हैं कि ये किसका है, किसकी वॉइस है? 5000 1896 ये नंबर है जिस पे आपको भेजना है अपना जवाब, लिख के नहीं रिकॉर्ड करके भेजिए। हाय दिस इज इयान, दिस इज द आंसर। हाय दिस इज इयान, दिस इज द आंसर। 5000 1896 पर बताइए ये आवाज जो मैंने अभी सुनाई है वो किसकी आवाज है।
3: तो आए तो बोले कि एक लेडी गुजर गई है और ये पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने आपके नाम कर दिया। साउथ बॉम्बे में उनकी बिल्डिंग्स थी ये वो, और टोटल प्रॉपर्टी 150 करोड़ की होगी।
1: 5000 1896 पर टोटल प्रॉपर्टी वर्थ बता दी। अब आप इनका नाम बता दो, कौन से एक्टर हैं? बंजारे फिल्म का, इनसे बंजारे का ये गाना बैरन मिर्ची पर सुनाने जा रहे हैं हम।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर,
3: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ।
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
2: नहीं नहीं,
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
7: दोनों मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
9: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: आशिक बनाया आपने और इनकी आवाज ने आशिक ऐसे बनाए थे कि 36 नॉनस्टॉप हिट ट्रैक इन्हीं से आए थे। फिलहाल तो आपके साथ है देवी और सजनों, मेरे साथ चल रहा है इस घंटे गेम जिसे कहते हैं। हाँ जी, और आज जो आवाज सुनाई है कुछ यूं है।
1: तो आए तो बोले कि एक लेडी गुजर गई है और ये पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने आपके नाम कर दिया। साउथ बॉम्बे में उनकी बिल्डिंग्स थी ये वो, और टोटल प्रॉपर्टी 150 करोड़ की होगी।
0: माय गॉड, और मैंने पूछा बताइए ये कौन है जिनकी आवाज मैंने यहाँ सुनाई है, जवाब आ गए हैं।
2: सर, द नेम ऑफ द आर्टिस्ट इज नन अदर देन संजय दत्त।
0: ओके,
2: ओनली नोन एज
0: बाबा ऑफ द इंडस्ट्री। थैंक यू भाई, थैंक यू।
3: गुड इवनिंग गौरव भाई, कैसे हैं?
0: बढ़िया भाई,
3: का शो जबरदस्त चल रहा है।
0: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
3: संजय दत्त जी की आवाज है जो उसमें भारीपन है उसी से पता चल जाता है। थैंक यू सर।
0: थैंक यू भाई, थैंक यू।
4: हाय, दिस इज उषा।
0: जी उषा जी,
4: नाउ प्लेइंग इज फॉर संजय दत्त।
0: ओके, थैंक यू।
5: हेलो गौरव, अब्दुल रहमान शेख हियर।
0: आई
5: गेस ये आवाज संजू बाबा की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
0: ओके,
6: हाय सर, ये संजय दत्त है और इसका आज जन्मदिन भी है।
0: हाँ जी, इनका
7: इनका। हाय गौरव, हाय, ये आवाज है संजू बाबा की।
8: अरशद भाई, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। ये
0: पहले बताइए, अरशद भाई नहीं गौरव भाई, आप भाई कंफ्यूज हो रहे मेरे नाम में। हाँ, फिर भी जवाब बताइए, जवाब बताइए।
8: आवाज थी संजय दत्त की।
0: ओके ओके।
9: हेलो, माय नेम इज प्रीतिका।
0: हाँ प्रीतिका,
9: द आंसर टू योर क्वेश्चन इज संजय दत्त।
0: ओके,
10: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग,
10: दिस इज सलीम।
0: जी सलीम जी,
10: ये इसका आंसर है संजय दत्त जो अभी आवाज
0: भाई। सब के सब ने बिल्कुल सही बताया है, संजू बाबा आपका हैप्पी बर्थडे टू यू भी है। तो संजय दत्त को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साल के दिन 1,10,050,000 जितना कहो कमी होगा, क्योंकि संजू बाबा की बात ही अलग है भाई। 67 इयर्स की कंप्लीशन हो गई है। एंड ऐसे में संजू बाबा, आपने वाकई में इंडस्ट्री में माहौल तो बनाया, और ऐसा माहौल बनाया कि आप जब जब जिस जिस फिल्म में आए लोगों को आनंद ही आ गया। और स्पेशली आपके लिए तो हम और सारे के सारे एक फिल्म की तारीफ जरूर करेंगे, एंड दैट वाज वास्तव। वास्तव में आपने हम लोगों को बचाया कि जब आप गुंडा बनते हैं, अब जब आप एकदम भयंकर रूप से विलन बनते हैं तो आप कैसे लगते हैं, और सबकी हालत खराब कर दी है जी। फिलहाल मस्त बोलो गौरव, आपकी उस फिल्म का गाना जो हम सब ने जाके सिनेमा हॉल में देखी और दोस्तों के साथ एकदम आनंद लिया, उसी का सुनाने जा रहे हैं। हाँ जी, और इसमें आपका सीन एक अलग ही लेवल पे था, माहौल ऐसा भौकाल था कि संजीव बाबा हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। हम अब आपको ये वाला गाना सुनाने जा रहे हैं 2002 से आपके कानों में, यहाँ मिर्ची पर।
11: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned.
1: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
1: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
1: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
3: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
0: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more. All at one place. Call 5572-7387 today.
4: Kabhi pyar ka ehsaas aur kabhi khud ko diya hua ek khubsurat tohfa. Festival of Diamonds is back at Tanishq. Rose pehenne ke liye stylish designs ho ya kisi khas mauke ke liye stunning diamond jewelry. Har piece mein hai Tanishq ka bharosa aur behtareen craftsmanship. Yahi nahi, get a free gold coin on every 3000 riyals spent on diamond purchases. To aaj hi visit kare Tanishq at Lulu Hypermarket, D-Ring Road and Doha Festival City today.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: O channati kuri, o channati kuri.

0: बस ऐसी दुआ भेजी होती काश किसी ने और मेरे पढ़ाई में अच्छे नंबर आ गए होते। तो और मजा आ जाता। फिलहाल दुआ मैंने भेजती तो है बहुत बार लेकिन नहीं हो पा रही कबूल। कभी कभी कुछ हो सकता है, हो रही हो मुझसे भूल, लेकिन आपसे एक भूल ना हो पढ़ाई लिखाई को लेकर एंड स्पेशली उन किताबों को लेकर जिसे आप शांति में पढ़ना चाहते हो। तो आपके पास मौका है कतर नेशनल लाइब्रेरी जाकर वर्कशॉप, फैमिली एक्टिविटीज एंड कम्युनिटी इवेंट में ज्वाइन होने का अगस्त के मंथ में। #974 बता दें 15th अगस्त को एक स्टार्टअप वर्कशॉप भी होने जा रहा है, कतर डेवलपमेंट बैंक से करने जा रहा है। एंड ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केट वैलिडेशन एंड अर्ली स्टेज फंडिंग कैसे होती है उसके बारे में बताएंगे। ये 7th समर लाइब्रेरी कैंप है, 2nd ऑफ अगस्त से शुरू हो जाएगा और इस पूरे महीने चलेगा जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट 15th अगस्त की ये वाली है। मैं बता दें इस दौरान आप अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और इतने नहीं, 18th ऑफ अगस्त को ओपन चेस फॉर एवरीवन इवेंट ऑन 20th अगस्त एंड 8 मजलिस लगेगी 18th अगस्त को। ये सब कुछ होने वाला है कतर नेशनल लाइब्रेरी में, एक छत के नीचे ढेर सारे वर्कशॉप, ढेर सारे समर कैंप एंड कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहे हैं। अब इंतजार मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके अपनी डेट फिक्स कीजिए क्योंकि आप घूमने नहीं गए, क्योंकि आपको पसंद है कतर में रहकर बहुत सारी चीजों का एक्सप्लोर करना जो इस पूरे समर वेकेशन में होती है। तो इन मौके का फायदा उठाइए और कतर नेशनल लाइब्रेरी के अगस्त के महीने में होने वाले सारे सेलिब्रेशन का हिस्सा बन जाइए। मस्त मौला गौर ने याद दिला दिया। वैसे लाइब्रेरी से याद आया, जब हम बहुत छोटे थे ना, हमारे पार्क के सामने बकायदा गवर्नमेंट की एक लाइब्रेरी थी, वहां हम जाकर ऐसी ऐसी चंपक कॉमिक्स पढ़ते थे, चाचा चौधरी पढ़ते थे। और पढ़ते नहीं थे उस जमाने में, इतना पढ़ने का पेशेंस नहीं था, खाली देर लग अलग फोटो देख रहे, घुमाते जा रहे पन्ने, फोटो देख रहे घुमाते जा रहे। एक बार लाइब्रेरी साहब ने भागो ऐसे, सबके सब खाली आ जाते हैं, पंचायत करके भाग जाते हैं। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi, it's hot.
1: माधुरी जी, आप अपने ग्रेस, एलिगेंस, पॉइज, अदा, इन सब के लिए जानी जाती हैं। असली में माधुरी दीक्षित कौन है?
2: The elegance and this and that, everything inside is me is like a mad person. And I love mad comedies. And I love these kind of situations which are like larger than life. वो कुछ अजीब सा हो रहा है इनके साथ, अजीब से कैरेक्टर्स हैं सब, you know, सब पागल, unhinged kind of characters.
1: अब समझी, इसीलिए लोग प्यार से आपको मैड्स भी बुलाते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
4: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
3: अभी कॉल करें 3100-0813।
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: कहीं गाना सुनाया किसने?
1: मस्त मौला गौरव।
0: अब ये तो किसी से कहीं बात छुपी नहीं है। कल 30 तारीख और मेरे चेहरे पर खुशी, इतनी खुशी होगी कल पूछिए मत, क्योंकि अच्छे रेट्स मिलेंगे और हम घर पैसे भेजेंगे। फिलहाल राइट नाउ की बात करें, एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26.24 रुपए हैं, 26.24 INR। 1 कतरी रियाल के बदले अगर हम लंकन रुपीज की बात करें तो 92.26। इसके बाद जनाब पाकिस्तान रुपीज की बात की जाए, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.35 पाकिस्तान रुपीज। तपाईको नेपाल रुपीज का रेट छ, दाजु 1 कतरी रियाल के बदले 41.96 का भल्छ रेट रे भाइनी, हाँ जी 41.96 का रेट छ भाइनी, घर भेजनेलाई पैसा राइट टाइम छ। अगर इसके बाद बंधु भारी थी के पैसा भेजना तो रेट अच्छे, 1 कतरी रियाल के बदले बांग्लादेशी टाका तो 33.98 तो 33.98 इटा रेट अच्छे बांग्लादेशी टाका तो। मस्त मौला गौरव के साथ ये था करेंसी एक्सचेंज रेट फ्रॉम आईपे मिर्ची। इट्स हॉट।

शाम शानदार only on 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट शाम शानदार brought to you by किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर

0: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: हाँ जी, और बारी आ गई है अब इस घंटे कॉन्टेस्ट खेलने की, जिसे कहते हैं
0: गानों की मिक्सी।
1: और गानों की मिक्सी में आज जिन दो गानों को मैंने पीसा है, आप उसे ध्यान से सुन के बताइए कौन कौन से गाने हैं।

दोनों गाने समझ में आ गए हैं। आप तो बड़े शातिर हो यार, आपसे कौन ही छुपा पाएगा कि कौन से दो गाने मैंने मिक्सी में आज पीस डाले हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए और बताइए कौन से दो गाने जो मैंने पीसे हैं।

5000189650001896 पर आप अपने जवाब को लिख कर बता कर रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं कि गौरव ये जो दो गाने आप बोल रहे हो वो फला और फला है। 5000189650 पर आज जो दो गाने मैं सुना रहा हूँ आपको गानों के मिक्सी में पीस कर, वो कौन से दो गाने हैं

5000196 पर। हम अब इससे पहले साड़ी गाना प्ले करें, आपके जवाब आने चाहिए, जितनी जल्दी हो सके भेजो 5000196 पर। कान अगर तेज है तो ही पकड़ पाओगे कौन से दो गाने हैं। मिर्ची इट्स हॉट।

0: चरम।
1: विशाल मिश्रा की ही आवाज में ऐसे गाने और खूबसूरत हो जाते हैं।
2: मस्त मौला गौरव।
1: लेकिन जब शाम के 6 बज जाते हैं तो हम आप मिक्सर ग्राइंडर में खो जाते हैं।
3: गानों की मिक्सी।
1: और गानों की मिक्सी में मैंने आज दो गानों को पीस दिया और आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ ये कौन से गाने हैं।

5000196 पर दो गाने हैं इसमें और दो बड़े घराने के बच्चों की पिक्चरें हैं इसमें। जल्दी से बताओ ये कौन से दो गानों को मैंने पीस कर एक गाने बना दिए हैं, जल्दी से बताओ।

0: 5000196 पर मस्तबॉल गौरव इतना ही कहेगा कि ये शानदार फिल्में हैं, दोनों की दोनों कमाल फिल्में हैं और दोनों के ही गाने मैंने मिक्स कर दिए हैं। देखें जरा है किसी में दम तो भाई बताओ हमें, हैं जी कान के तेज हो तो बताओ ना मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो बहन जी।
3: हाँ जी,
2: ये एक सेकंड, ये बहन जी हम आपके पड़ोस में रहते हैं, ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है, वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
3: आप, आपके घर में कोई नहीं है क्या?
2: नहीं, वाइफ है वो गई हुई है कहीं, तो आप थोड़ा सा आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड।
3: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
2: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ, एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी, एक सेकंड बहन जी आप होल्ड करेंगी, एक सेकंड सर। आएंगी मामा आएंगी, चीजी लाएंगी बेटू, चीजी लाएंगी। नहीं चुप हो रहा, आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
3: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है?
2: एक सेकंड, इधर आओ हाँ इधर आओ, देखो मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ डायपर गीला है बहन जी इसका,
3: तो उतार लीजिए।
2: एक सेकंड रुकिए, ये इसके गले में अटक रहा है डायपर, एक सेकंड।
3: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
2: अच्छा ये बेब है, एक सेकंड
3: डायपर, देखिए सुसु करा होगा उसने, देखिए।
2: हाँ सुसु ही करा है, सुसु करा है, चल
3: उतार दीजिए।
2: एक सेकंड उतार दिया। मैं जी मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही है, क्लैपिंग करो। हाँ मुझे भी वो याद आ रहा है। नहीं बहन जी आप सही कह रही हैं, रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
3: और मैं पागल हूँ, ओह नो।
2: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: अर्ज किया है
5: इरशाद।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
2: 89.6
3: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mix. Mirchi.
1: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
2: सही है सही है।
3: बाकी सारी फेक लगे देख तुझको ब्रेक लगे दूर दूर से ठीक है रानी पास आऊं तो सेक लगे
4: पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया।

0: इश्क करिया कर तो करा करिए ना, मैं तो कहता हूँ एक्सरसाइज करा करिए, फिटनेस बहुत जरूरी है। फिटनेस से याद आया, फिटनेस तो तब भी होती है जब आप खेल कूद करते रहते हैं, जैसे कि आप फ्राइडे सैटरडे जा रहे हैं दोस्तों के संग कहीं, अच्छा बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है सर, ये भी आपको मजबूत रखेगा। और खेल जगत में जो भी हो रहा है वो हम आपके कानों तक पहुंचा ही देते हैं। अगर बात करें तो यस, अब इंडियन टीम बिल्कुल तैयार बैठी है कि उसे अगली सीरीज श्रीलंका के खिलाफ जो खेलनी है वो अच्छे से खेल ले। इन सब के बीच हम आपको इंपॉर्टेंट बात ये भी बताएंगे कि टॉप 50 T20 बैट्समैन की लिस्ट में इतनी जल्दी ही वैभव सूर्यवंशी पहुंच गए हैं, और इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी को 15 साल की उम्र में टीम कैप्टन की जिम्मेदारी संभाल दी गई है। यस, दुलूप ट्रॉफी में उनको जिम्मेदारी मिल गई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें ICC ODI रैंकिंग में शुभमन गिल ने डैरिल मिचेल से नंबर वन की कुर्सी छीन ली है एंड कमाल कर दिया है। वैसे वर्ल्ड कप 2027 जो कि वनडे वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, उसमें डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने हेड कोच ने ICC से कुछ इंपॉर्टेंट जो उनके रूल्स है बदलने की बात कही है। ये रूल्स कितने बदलेंगे नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वेस्टइंडीज से हारकर पाकिस्तान थोड़ा पीछे जरूर हो गया है। इन सब के बीच बस बॉल अगर आपको ये भी बता दे कि क्रिकेट जगत की तो इतनी सारी बातें मैं करता हूं, लेकिन फुटबॉल जगत में भी कुछ खास हो रहा है। यस, और वो खास बात ये है कि मेसी अब रो नहीं रहे। हां जी, पिछले दिनों भाई की आंखों में जो आंसू आए थे वो फाइनली अब शायद बह गए, और वो पहली बार अपने घर रोजारियो में एक लोकल मैच देखते हुए दिखाई पड़े हैं। चलो जी, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कतर के अंडर 18 टीम ने कमाल किया है। वो फीबा गल्फ चैंपियनशिप में अब ओमान के अगेंस्ट वेंसडे को अपना मैच खेलने जा रहे हैं, तैयार हो जाइए। अब बहुत सारे नए यंग बास्केटबॉल चैंपियन हमारे कतर में पूरी दुनिया से आने वाले हैं अगले साल फीबा का वर्ल्ड कप जो यहां होगा। इसी उम्मीद में कि मैंने खेल जगत के कोने कोने की बात आपके कानों तक पहुंचाई, अगर नहीं सुनाई दी तो आप जरूर कान साफ कराएं मेरे भाई। मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची 1. It's hot.

0: यार सच बोलूं मेरी हिम्मत टूट जाती जब मैं ऐसे सुनता हूँ ना, किसी की लॉटरी लग गई, पहली बार टिकट खरीदी थी और एक बंदे की एक हफ्ते में दो बार, मेरी तो हिम्मत टूट जाती है सर।
1: मस्त मौला गौरव
0: यहाँ जन्म जन्म से कूपन भर रहे हैं, कूपन में आज तक एक बाल्टी नहीं आई सर। यहाँ लोगों को लाखों डॉलर आ रहे हैं। अब बताइए ऐसे ऐसे लोग हैं नॉर्थ कैरोलिना में, मैडम ने लाइफ में पहली बार टिकट खरीदा और $100,000 इन्हीं के लाइफ में आ गया। बताओ ये इतनी खुश नसीब, पहली बार में आ रहा है मैं यहाँ, पहली बार में, छोड़ो आज 100वीं बार में एक चम्मच प्लेट गिलास नहीं जीत पाया। और एक भाई साहब है एक हफ्ते में दो बार लॉटरी लग रही है। ये सब सुनते ना तो ऐसा लगता है कि क्या करें हम, कूद जाएं कहीं से हैं? एक हफ्ते में दो दो लॉटरी कैसे जीत ले रहे हो मेरे भाई। फिलहाल बस इतना ही कहेंगे, जिंदगी में कुछ लोगों को ना ऊपर वाला अलग सही नसीब देकर भेजता है। ओहायो के ये भाई साहब जो हैं, इन्होंने 40,000 की पहली लॉटरी जीती, फिर 25,000 वाली उसी हफ्ते में दोबारा जीत ली, $65,000 इनके एंटी में आ गए और मात्र 25 साल की उम्र है। बताइए मैं यही सोच रहा हूँ कि यार हमारी लाइफ में कब ऐसा होगा। हम तो वो परचून वाले के जो छोटी सी आती थी ना, उसमें काजल की डिब्बी जीत के आए थे घर एक बार, और उसी में खुश हो लेते थे, चलो काजल की डिब्बी आ गई, मम्मी आंखों में वही काजल भर देती थी। कुल मिला के इतना ही कहना चाहते हैं, सबका नसीब एक जैसा नहीं होता, पर जिनका होता उनके लिए क्या ही बोले।
1: क्या कह रहे हो,
0: अब सोचिए ना कि एक हफ्ते में दो बार लॉटरी जीतना और पहली बार में ही $1,00,000 जीतना। ऐसे लोगों के बारे में सुनकर हमको लगता है कि अगले जन्म में भगवान कम से कम कुछ देना मत देना, एक लॉटरी की जीत जरूर देना, हमें बहुत शौक है मिर्ची, इट्स हॉट।
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी, आपको क्या लगता है?
2: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है। I think he is one of those people.
1: Tripti Dimri spilling some truth bombs on Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: Hello, shops. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: Mirchi Helpline?
1: या मिर्ची हेल्पलाइन बताओ क्या प्रॉब्लम है हुँ?
0: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ एक चीज लेनी होती है पांच लेके आ जाता हूँ क्या करूँ?
1: ये तो गलत है हुँ? अगली बार से एक ही लाना क्योंकि पांच लेकर पकड़े जाओगे हुँ? तो मॉल वाले चोर समझकर मारेंगे।
2: रॉक, रॉक।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का। इट्स हॉट शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। मिर्ची फ्रेश माल।
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: कैसे इतना मेंटेन्ड हो इमरान भाई?
2: मस्त मौला गौरव।
1: भाई आवारापन 2 के ये गाने में देख रहा हूँ ना, इमरान हाशमी वैसे ही लग रहे हैं जैसे 2007 में आवारा।
0: म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: कैसे इतना मेंटेन्ड हो इमरान भाई?

0: और उन्हीं हीरोज की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज सामने आई है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस बस फॉलो गौरव बता दे कि जो लोग हमारे कथर को क्लीन नीट एंड शाइन बनाकर हमेशा रखते हैं, हमें नजर आते हैं अपने येलो कपड़ों में, अपने ऑरेंज कपड़ों में, वो सारे के सारे लोगों के लिए एक ऑसम न्यूज आई है। यस कतर के मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी के जनरल क्लीनलीनेस डिपार्टमेंट ने अपना एक डेडिकेटेड मेडिकल क्लिनिक जो है वो शुरू किया है। 3200 से ज्यादा सैनिटेशन वर्कर्स को यहां पर मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। यस ये क्लिनिक डिपार्टमेंट के प्रमाइसिस के अंदर ही बनाया जा रहा है। यहां पर अब इनको फास्ट मेडिकल सपोर्ट मिलेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज इनको यही मिल जाएंगी और इनका रेगुलर चेकअप भी अब इनके खुद की मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर ही हो जाएगा। वेल कुल मिलाकर इतने कहेंगे कि वो वर्कर्स जो हमारे कतर के कोने कोने को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखते हैं, उनके वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान भी तो कतर की टॉप प्रायोरिटी है और इसीलिए बाकायदा ये एक जबरदस्त मूव लिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी की बिल्डिंग के अंदर ही एक बाकायदा इनके लिए क्लिनिक का सेटअप कर दिया गया है। ये मेडिकल क्लिनिक 3200 सैनिटेशन वर्कर्स को अपनी तरह से मेडिकल सपोर्ट पहुंचाएगी। एक शानदार मुहिम है ये। वो लोग जो हमारे लिए हमारे कतर के कोने कोने को साफ सुथरा रखते हैं उनके लिए ये सोच के लिए हुकूमत को दिल से सलाम। एंड हमारा भी फर्ज बनता है कि अगली बार हम जब सड़क पर निकलें कोई पैकेट ऐसे छोड़ के ना आए बल्कि उसको डस्टबिन में डालें ताकि उनका थोड़ा काम हम कम कर पाएं। वो क्लीनलीनेस वर्कर्स, वो सैनिटेशन वर्कर्स जो हमारे कतर में सफाई का काम करते हैं, आप उनके लिए ये छोटा सा काम जरूर कीजिएगा। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: ड्राइवर हूँ
1: के जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली तो ना लाल रंग पेंट हुआ है।
0: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
0: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी चौड़ी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते, किसकी जिप्सी?
0: एक तो समन है आपके नाम का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
0: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया
1: है
0: फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है वो
0: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है लेकिन मतलब घर पे नहीं है, वो क्या मैं घर पे नहीं हूँ।
0: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है, मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आप पहला रहा हूँ।
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
0: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
0: रुकिए, आशीष भार्गव सर, आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। मैं अचानक ऐसे हो गया रात, वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
0: मैं कहाँ रहा हूँ?
1: सॉरी, आप अभी कहाँ रहो?
0: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने आ रहा है, परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
0: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
0: थैंक
1: यू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
4: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
2: हिट गाने कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 89.6 89.6 FM।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे वो उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं।

0: आपके साथ भी होता ना, क्या गिफ्ट लेकर जाएं कि घर वाले खुश हो जाएं।
1: मस्त मौला गौरव।
0: मेरे साथ भी होता है यार, हमें क्या परफेक्ट गिफ्ट है जो लेकर जाना है वो समझ नहीं आता, लेकिन फिर ऐसे में जब एक चीज समझ में आती है तो वो सबको पसंद भी आती है, और वहां वाले कहते हैं अरे भाई गल्फ से आ रहा है इसलिए लेकर आ रहा है। फिलहाल बात कर रहा हूँ मैं खजूर की, जिसका 11th डेट फेस्टिवल हमारे कतर में चल रहा है। कतर के 11वें लोकल डेट फेस्टिवल में अब तक 20,000 विजिटर्स पहुंच चुके हैं और लगभग 41 टन लोकली ग्रोन डेट्स जो हैं पहले 3 दिन में ही बिक गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने ये बता दिया है कि अलग अलग वैरायटी बिक रही हैं। सबसे ज्यादा जो है वो है हमारे कतर के वो वैरायटी जिसे हम खलास कहते हैं, यस खलास वैरायटी जो कि 17 टन बिकी है। इसके अलावा सीशी, खनाजी ये सब भी बिक रही है, एंड बरी ये भी बिक रही है। कुल मिलाकर अलग अलग वैरायटी को अगर आप एक जगह देखना चाहते हैं तो आपको ईस्टर्न स्क्वायर से वाकिफ में पहुंचना ही पड़ेगा, जहां पर अंटिल 10th ऑफ अगस्त वाकिफ के ईस्टर्न स्क्वायर में शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक और वीकेंड्स पर 10 बजे तक ये लोकल डेट फेस्टिवल चल रहा है। एंड सच मानिए, मुझे लगता है कि कतर जिस तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है अपने यहां जितने डेट्स की खपत है उसको ग्रो करने में, उसका 75% उसने अचीव कर लिया है। 26,000 टन एनुअली हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा डेट्स की जो प्रोडक्शन है वो इजिप्ट में है। यस, मिस्र नंबर 1 कंट्री है। 1.87 मिलियन टन डेट वहां हर साल मिलता है। अगर इसकी बात करें सऊदी अरेबिया, उसके बाद नंबर 2 पर 1.64 मिलियन टन वहां उगाया जाता है। एंड इसी डेट से आप पूरी दुनिया में डेट्स के अलग अलग चीजें पाते हैं। हमारे कतर में इसकी अलग अलग वैरायटी है और मुझे डेट्स के शेक्स बहुत पसंद आते हैं, और मैं तो कहता हूं हजूर कतर में हो तो जरूर खाओ खजूर, क्योंकि ये आपको एनर्जी प्रदान करता ही करता है। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned.
1: यार, बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
2: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
1: क्यों? वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
2: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
1: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
2: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
1: ओह, मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस।
2: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
3: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
4: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
5: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
7: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: दो ग्रेस मार्क्स की कीमत तुम क्या समझो चुन्नी बाबू।
1: मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
0: फेल होते हुए बच्चे के लिए समाधान है वो अपने माँ बाप के सामने महान है अगर उसे ये दो ग्रेस मार्क्स से किसी सब्जेक्ट में पास होने का मौका मिल जा रहा है तो। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, क्लास 11th में अकाउंट्स में मैं 38 मार्क्स पे था। मैं कह रहा था हाफ ईयरलीज में कम से कम फेल का वो लाल स्याही नहीं दिखना है, सर प्लीज दो मार्क्स किसी और अच्छे से देखिए सर, कहीं मिल जाएगा। और जैसे ही सर ने वो दो मार्क्स बढ़ाए मेरे एक सवाल के जवाब में कि चलो ठीक है इसमें मैं तुम्हें दो मार्क्स और दे देता हूँ, बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। सोचिए मैं ऐसी छोटी छोटी चीजों के बढ़ने पर खुश हो जाता था। और यहाँ तो कतर टॉय फेस्टिवल 4 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है। Yes, वो बच्चे जो अभी तक नहीं जा पाए थे कतर टॉय फेस्टिवल में वहां भारी भीड़ को देखते हुए, अब उनके लिए एक हफ्ते का एक्सटेंशन आ गया। अगर ये कहे तो गलत नहीं होगा, 31 जुलाई को खत्म होने जा रहा था, अब 4 अगस्त तक चलेगा। Yes, जहां पर अब फैमिली के पास मौका है कि अब कोई बहाना मत बनाइए कि अरे खत्म होने वाला हम तो जा नहीं पाए, अब जाइए DECC दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में जहां बच्चों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड हमारे अंदर का बच्चा भी जाग जाए तो क्या बुराई है यार, तो जरूर जाइए बच्चों के इस जोन में जहां पर स्टूडियोज इन्फ्लेटेबल्स यंग एडल्ट किड्स एंड प्री स्कूल ज़ोन्स बने हुए हैं जहां पर बच्चे जाकर मेन स्टेज पर भी ढेर सारा एंटरटेनमेंट देख सकते हैं। कतर टॉय फेस्टिवल हर साल बड़ा होता जा रहा है, एक फैमिली फोकस एंटरटेनमेंट पूरा प्रोग्राम है जो पूरे एक महीने तक हमारे कतर में रौनक लगाए रखा है और इस बार इसका एक्सटेंशन हुआ है तो मुझे लगता है यह मौका आपको मिला है। अगर अभी तक नहीं जा पाए थे तो होकर आइए, 4 अगस्त तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड आप क्या जानो बच्चे खिलौनों से कितना प्यार करते हैं, मुझसे पूछो, मैं बचपन में जो खिलौना मिलता था ना उसे ऊपर छत पे से ले जाके नीचे फेंकता था कि देखो तो कितना मजबूत बना है। 89.6 मिर्ची 1 बड़ा डिस्ट्रॉयर टाइप का बच्चा था मैं। इट्स हॉट।

शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर 89.6 89.6 It's hot.

0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कुणाल खेमू, एज एन एक्टर आपको डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन प्ले याद रखना पड़ता है. एज ए ह्यूमन बीइंग आपको आपके सपने याद रहते हैं?
3: मुझे एक्चुअली सपने में प्रॉब्लम है, आई डोंट रिमेम्बर माय ड्रीम्स. मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते. तो आई कैन मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की.
2: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू, काश हम भी ऐसा कर पाते. हर दिन की नई शुरुआत. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Our business is our business. None of your business.
5: Par didi, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
6: entertainment. Qatar ka number one radio station.
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: अरे हम भी तो आपके लवर हैं, तभी तो शाम को लवर लवर बतियाने चले आते हैं।
1: मस्त मौला गौरव।
2: बट इमेजिन यार, हम साल के 7 महीने कंप्लीट कर चुके हैं और हम अगस्त में एंटर कर जाएंगे इस वीकेंड। यार लग ही नहीं रहा टाइम कैसे भागता जाता है ना। अब आखिरी 120 दिन रह जाएंगे जैसे ही अगस्त खत्म होगा, मतलब साल खत्म होने को आ गया ऐसा समझ लो। और प्लानिंग धीरे धीरे हमारे कतर में हर चीज की बढ़ती जा रही है। एंड नेक्स्ट आईफोन ने जो प्लान किया है वो तो अलग लेवल है भाई साहब। वो कह रहा है तुम आईफोन खरीद नहीं सकते हो, तुमको लेकिन स्टेटस सिंबल भी दिखाना है, अगर तुम्हें भौकाल मेंटेन रखना है तो अब हम लीज प्रोग्राम ला रहे हैं। मतलब यार फोन खरीदो मत, फोन को लीज पे ले लो और जब तुमसे ना हो पाए तो वापस भी कर दो। कुल मिला के मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एप्पल की यह स्ट्रेटजी और भी ढेर सारी कंपनीज अपनाने वाली हैं। बस यही कहूंगा, शोशा के चक्कर में पढ़ने के चक्कर में कहीं आप ज्यादा दोस्तों से उधारी ना लीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। मैं ना आपकी बहुत केयर करता हूं, आपको दोस्तों से उधारी लेने की जरूरत नहीं है, मुझ जैसे दोस्त को उधार देने की जरूरत है। अगर आपके पास पैसे ज्यादा है आप उल जुलूल खर्च मत करिए, हमें दीजिए, हम आपके पैसों का सदुपयोग करेंगे। फिलहाल इसी उम्मीद से कि आपकी कल सैलरी आने वाली है, आप खुश हैं, और अगर आप क्यों कंपनीज में तो आपकी आ गई है, आपको भी बधाई, घर पैसे भेजते रहो मेरे भाई। एंड इसी उम्मीद में कि कल शाम एक बार फिर से मस्ती धमाल लेकर लौटेगा मस्त मौला गौरव, ले रहा अलविदा, तब तक के लिए टाटा बाय हबीबी, मस्त सलामा मिर्ची हरारा कतीर, इट्स हॉट सदीक।

0: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: गई मैं आपको 2011 में, जहां पर शोर इन द सिटी से गाना था साइबो, श्रेया घोषाल, तोची रैना की आवाज और यहां मेरी आवाज और मिर्ची कैफे। आप सुन रहे हैं मेरे यानी पारुल के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची कैफे।
0: ये एक गाना है जिसका मुझे सब कुछ ही ऐसे मिक्स होके एकदम ऐसे रिवाइंड हो गया, बिकॉज यू रिमेम्बर दीज लाइंस जो आपने अभी अभी सुनी है, जिनमें आता है सुर्खियां हैं हवाओं में दो दिलों के मिलने की, हाँ अर्जियां हैं नजारों में लम्हा ये थम जाने की, कैसे हुजूर जी ये लब दिखलाए, चुप्पी लगा के भी गजब है ये ढाए, दिस इन द एंटायरिटी What lyrics that give me goosebumps. Sachin Jigar ka music, Sameer ke lyrics. There is something about this song that, just lives here. By the way, kuch aisi kahaniyan bhi hoti hai na hamare saath jo hamesha ghar kar jati hain aur yaad rehti hain. तो एक ऐसी कहानी मैं आपको बताती हूँ। मेरी एक दोस्त थी, मान लो आप, तो वो मार्केट से निकल के रिक्शा में बैठी, उसके हाथ में पैकेट्स थे, शॉपिंग करके निकली थी, जा रही थी, अचानक से उसको ऐसा रियलाइज हुआ कोई तो है जो उसको पीछे एक बाइक पे फॉलो कर रहा है। फिर उसने कहा कि हाँ भाई, जहां मैं मुड़ रही हूँ, जहां मेरा रिक्शा मुड़ रहा है तो पीछे आ जा रहा है इस तरीके से, तो ही विल फॉलो मी और मेरे घर तक पहुंच जाएगा, दिस इज सो बैड। तो उसके दिमाग में ना एक वो होने लगी, वो अपने रिक्शे वाले भैया से कहने लगी कि भैया प्लीज थोड़ा तेज चलाओ, ये बंदा ना पीछा कर रहा है। तो थोड़ा सा ही आगे वो लोग गए थे, उसके बाद पीछे से उसने आवाज देनी शुरू कर दी, हेलो मैडम, अरे मैडम सुनिए सुनिए मैडम। व्हेन शी वाज जस्ट अबाउट टू रीच हर होम, वो बंदा एकदम तेज आगे बाइक निकाल के रिक्शा के आगे रुक गया। इधर मेरी दोस्त की धड़कनें रुक गई कि ये क्या होने वाला है मेरे साथ। उस बंदे ने निकाल के मेरी दोस्त का फोन उसको दिया और बोला, मैडम मैं इतनी देर से आपके पीछे आ रहा हूँ, आवाज लगा रहा हूँ, आपका फोन वहां गिर गया था जैसे ही आप रिक्शा में बैठी थी। Can you believe it? The way she told me, एकदम exactly मैंने भी आपको उसी तरीके से बताया है। And मुझे लगा कि यार ये दुनिया ऐसी हो गई है ना कि अगर कोई अच्छा भी करने जाएगा हमारे लिए, हमें पहली चीज जो होती है वो शक ही होता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। एक बार हम कोशिश करके देख सकते हैं, as all of us, all of us human beings, तो शायद हम इस प्यारी से दुनिया को वापस अच्छा बना सकेंगे जैसे कि हम सोचते हैं। अगला गाना ओमकारा से आपके लिए, श्रेया घोषाल की आवाज में, और विशाल भारद्वाज ने इसमें तीन रोल्स अदा किए हैं। ही वाज द डायरेक्टर ऑफ ओमकारा, ही कंपोज द साउंड ट्रैक, और इस गाने में उन्होंने ये मेल पोर्शन भी खुद गाया है। सुनो इस गाने को, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, इट्स हॉट।

श्रेया घोषाल की आवाज में और विशाल भारद्वाज ने इसमें तीन रोल्स अदा किए हैं. ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ ओमकारा, ही कंपोज द साउंड ट्रैक और इस गाने में उन्होंने ये मेल पोर्शन भी खुद गाया है. सुनो इस गाने को. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ. इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La virgua, la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello,
4: Mr. Gotham.
3: Good
4: morning. Sir, I actually asked sir, the request करना था. मैं तो आप सुना है फिर वो singing, winging सिखाते हैं sir. तो sir गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो sir थोड़े different होते हैं.
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था. तो स्नेक का ही घुस गया था तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. सर नागिन क्या है सर नगीना फिल्म देखी आपने नगीना फिल्म देखी है सर आपने
3: कुछ कहा कि सुना

0: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है एनाकोंडा आपने? एनाकोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ।
0: वही सर, एनाकोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: एनाकोंडा में कौन से गाने हैं
0: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया एनाकोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश करो, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया।
1: मैं भाग ले क्या?
0: सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
1: सुन ले बात
0: मेरी,
1: बात सुन पहले बात।
0: हाँ सर,
1: और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
0: है सर, बोलिए।
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
0: जी सर।
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
2: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Beat ke saath only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, attack.
2: यार बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
3: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
2: क्यों, वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
3: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
2: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
3: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
2: ओह, मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस।
3: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
0: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
4: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: जाने दे।
1: जिन लोगों को भी लगता है ना कि जब वी मेट इम्तियाज अली की सबसे अच्छी सबसे पहली फिल्म थी जिसमें मजा आ गया था हमें, स्पेशली जेंजी, आई थिंक यू मस्ट वॉच अ फिल्म कॉल्ड सोचा न था, जिससे मैं ये गाना लेकर आई हूँ आपके लिए, यारा रब, सोनू निगम और संजीवनी की आवाज में।
2: मिर्ची कैफे
1: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरी आने पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और आपको पता है चमेली फिल्म भी इम्तियाज अली की एज अ लिरिसिस्ट पहले आ गई थी, बट सबसे पहले साइन इम्तियाज अली ने सोचा ना था की थी एज अ लिरिसिस्ट, उन्होंने ही बनाई थी ये फिल्म। अगला गाना जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैफे पर, उसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये फिल्म थी डार्क सुपर नेचुरल थ्रिलर, अगर आपने नहीं देखी तो देखना, वैसे मैंने भी नहीं देखी, आई विल आल्सो वॉच, बट दिस सॉन्ग रिमेन बिकॉज गुलजार साहब के ये लिरिक्स हैं और सुनिधि चौहान, क्लिंटन सेरेजो ने जिस तरीके से ये डुएट गाया है और जिस तरीके से यू नो ये गाना अनफोल्ड होता है और इसके लिरिक्स, मेरी बात सुनो, जस्ट लिसन टू दिस फॉर सुनिधि चौहान एंड गुलजार राइट नाउ, अमेजिंग लिरिक्स है, अमेजिंग गाना है। और हाँ, अगर आपको मजेदार गाने ऐसे ही और सुनने हैं, अपने चॉइस के बताने हैं, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि मेरे स्टूडियो का है, सामने मुझे दिख रहा है 7045983983, और आप जनरली चिटचाट कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और ऐसे ही यू नो बहुत सारे गाने भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे ढूंढो paruls.world नाम से, तो हम वहां भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल सुनो ये गाना, अभी आ रही हूँ वापस, अभी जा नहीं रही मैं, लिसन टू दिस, आई विल बी बैक, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
1: Stay tuned.
2: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
3: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
4: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
5: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

यार आपको अपना एक ऑनेस्ट कन्फेशन बताऊं, जब मैंने ये पहली बार गाना सुना था ना, ऑब्वियसली मैं छोटी थी और मुझे लगा था कि ये जो हरिहरन साहब है ना जो ये गाते हैं, ये लिटरली कोई आसमान में एक व्यक्ति रहते हैं जिनकी इतनी पावरफुल और इतनी स्ट्रांग आवाज है जो दिल तक पहुंचती है. तो ये ना हरिहरन मेरे हिसाब से कहीं स्काई में रहते होते थे. सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. चंदारे सुना आपने सपने फिल्म से साधना सरगम और हरिहरन की आवाज में. ये बहुत ही प्यारी फिल्म थी यार. आई एम श्योर जेन ज़ी ने तो नहीं देखी होगी. काजोल थी इसके अंदर और वेरी डिफरेंट वेरी कूल फिल्म इट वॉज. प्लीज इसको देखो. जावेद अख्तर साहब ने लिखा था ये लिरिक्स, यू नो. एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग, राशिद अली वसुंधरा दास की आवाज. ये जो फिल्म थी ना जाने तू या जाने ना, रहमान सर का म्यूजिक है इसके अंदर और अब्बास ने लिखे हैं लिरिक्स. इस पिक्चर को अगर आपने नहीं देखा है अभी तक जाने तो ये जाने ना, तो ड्रॉप एवरीथिंग एंड वॉच दिस फिल्म फॉर द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड द ब्यूटी ऑफ लव. क्योंकि जेनेलिया डिसूजा और इमरान खान की ये पिक्चर, तो यार ये बड़ी ही खूबसूरत पिक्चर थी. और इसके बड़े सारे गाने हैं जो बड़े अच्छे हैं, ऑफकोर्स रहमान सर का म्यूजिक, लेकिन ये ना ऐसे ठहरा हुआ प्यारा सा गाना है जो हम सबको स्पेशली वो वाला जो आजकल के वर्ड्स में कहते हैं सिचुएशनशिप या आई डोंट नो, लेकिन होता है ना कि कभी आपका कोई दोस्त है लेकिन आपको रियलाइज होता है कि वो दोस्त किसी रिलेशनशिप में चला गया है, तब आप सोचते हो कि इतनी जेलस क्यों हो रही हूँ मैं या हो रहा हूँ मैं, या मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है कि ये इंसान मेरे साथ क्यों नहीं है उतना जितना पहले होता था. बट यस, दिस सॉन्ग इज स्पेशल. सुनो इसको ओनली ऑन मिर्ची कैफे. मिलती हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हो गया ना नाम की एक फिल्म थी 2004 में आई थी। जावेद अख्तर साहब ने इसके लिरिक्स लिखे हैं अगेन साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज में। इफ यू रिमेम्बर द फिल्म इसमें विवेक ओबेरॉय एंड ऐश्वर्या राय, यस दोज टाइम्स, तब की पिक्चर थी ये। और मुझे ना ये गाना बहुत पसंद आता था, ये इसलिए मैं आपके लिए लिख रहा है क्योंकि मेरे जैसी बड़ी सारी लड़कियां होंगी आई एम श्योर जिन्होंने ऐश्वर्या को इन अ हैप्पी रोमांटिक फीलिंग डांस करते हुए देखा इस गाने पे। एंड यू रिमेम्बर दिस सॉन्ग
1: मिर्ची कैफे,
0: सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरी आने पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। अगर आपको याद आया हो ये गाना और उस वक्त आप क्या कर रहे थे, प्लीज डू राइट टू मी। पारुल्स डॉट वर्ल्ड इज माई इंस्टाग्राम आईडी एंड नंबर है मेरा 7045983983। ठीक है, जरूर लिखो। और कोई गाना अगर आप सुनना चाहते हो अगले एपिसोड में, प्लीज वो भी मुझे जरूर लिखो। और जाते जाते मैं आपको बताऊंगी एक बहुत प्यारी कहानी। एक बार क्या होता है, एक लड़की है वो लाइब्रेरी में जाती है, थोड़ी एंग्शियस है, थोड़ी परेशान है, एग्जाम्स आने वाले हैं, पर्सनल लाइफ में भी इधर उधर चल रहा है, और वो एज होती है ना जब मम्मी पापा से भी थोड़ा झगड़ा चल रहा है, ऑल दोज थिंग्स। तो उस लड़की के पापा ने उसको बताया होता था कि एक लाइब्रेरी है जहाँ वो बहुत जाते थे इन हिज चाइल्डहुड एंड कॉलेजहुड। तो वो लड़की ना उस दिन उस लाइब्रेरी में जाती है बैठ के सुकून से पढ़ने के लिए। सो जब वो उस बुक को पढ़ रही होती है, पेज पलट रही होती है, वो देखती है कि उसमें कुछ तो लिखा हुआ है एक छोटा सा। सो इन अ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग इट वॉज रिटन Don't give up ever. और आपको पता है नीचे क्या लिखा होता है, नीचे उसके फादर के सिग्नेचर्स होते हैं। तो यू नो जब उसके पापा उस लाइब्रेरी में जाते होते थे, वन फाइन डे पता नहीं क्यों उन्होंने वो लिख दिया होगा, लेकिन जब उस लड़की को अनजाने वो नोट मिलता है और अपने डैड के सिग्नेचर्स किया हुआ वो, सो होता ना कभी कभी कि हम किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, शायद घर वालों से भी नहीं कह रहे हैं कि हम क्या गो थ्रू कर रहे हैं, ना हेड्स इन आर माइंड्स इन आर हार्ट्स, और ऐसी कोई चीज मिल जाए वो रिस्टोर कर देती है सारा हैप्पीनेस और होप और फेथ। सो दीज स्टोरीज व्हेन आई रीड आई लव देम, और मुझे लगता है कि मैं जरूर आपको सुनाऊं। तो जाते जाते ये कहानी मैं आपके साथ छोड़ के जाना चाहती थी। एंड यू नो विद सच थिंग्स यू जस्ट वॉन्ट टू फील। तो अगला गाना जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ शान और साधना सरगम की आवाज में, द सॉन्ग सेज कुछ ना कहो। तो आप भी कुछ ना कहो और सुनते रहो मिर्ची। स्टे ट्यून्ड, मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में बहुत जल्द। मेरा नाम है पारुल, शो है मिर्ची कैफे। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ऐसे ढूंढ के चुन के मैं दो लोग लाई हूँ आज बात करने के लिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यस, पुरानी जीन्स पर आज हम ऐसे दो लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो पोल्स अपार्ट हैं, एकदम अलग अलग दुनिया, मतलब दुनिया एक ही है, फिल्मी दुनिया, लेकिन अगर उनकी पर्सनल पुरानी जीन्स पर आज हम ऐसे दो लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो पोल्स अपार्ट

कर साहब, है कोई तालमेल, कोई कॉमन पॉइंट? वैसे मैं सोच रही थी बाय चांस इन्होंने किसी फिल्म में साथ में काम किया है, मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा है। इफ यू कैन थिंक ऑफ इट यू कैन टेल मी इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स करके, डीएम करके @rj.charu ये मेरा आईडी है। तो इन दोनों लोगों के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल बातों पे ब्रेक, इट इज अ म्यूजिकल ब्रेक। ये गाना सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: क्या बना?
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: हाय शिवानी।
4: हाय
5: शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
4: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
5: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है, मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
4: समाचार?
5: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
4: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
5: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
4: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
5: अच्छा।
4: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
5: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
4: आपको लेनी है क्या?
5: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
4: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
5: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
4: आप सिर्फ
5: मेरी बात
4: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
5: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
4: सिर पे करवा ले
5: शिवानी।
4: हेलो,
5: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
4: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
5: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
4: नहीं
5: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शराब, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
4: कुकड़ुकु
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
2: इट पटाक।
7: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें,
8: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
1: फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मी लाइफ वाले संजू बाबा। ऐसा सुनने में आता है कि जब ये 3-4 साल के थे और नरगिस जी के साथ अपनी मम्मा के साथ अपने फादर सुनील दत्त को विजिट करने उनकी एक फिल्म के सेट पर गए थे। ये फिल्म थी 1963 की मुझे जीने दो, जो डाकुओं के ऊपर थी। सुनील दत्त साहब इसमें एक्ट भी कर रहे थे, इसके प्रोड्यूसर भी थे। इस फिल्म की शूटिंग हुई थी मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में और एक बार तब के एक फेमस डाकू इस फिल्म के सेट्स पर पहुंच गए थे और छोटे से संजू बाबा किडनैप होते होते बचे थे।
2: कोशिश की थी, रूपा डाकू उस टाइम पे ऑपरेट करते थे, दत्त साहब को मिले, मैं छोटा था, मेरे को गोद में बिठा लिया और दत्त साहब को पूछे कि आपने पिक्चर में खर्च कितना किया अभी तक। उन्होंने बोला 10-15 लाख रुपए। बोले अगर इसको उठा के ले जाएं कितना देंगे। तो हंसी मजाक से मुझे उठा लिया उस दिन, पैकअप मम्मी और मेरा बॉम्बे। तो ये सही था, किडनैप नहीं हुआ, लेकिन
1: डाकुओं को आइडिया तो आ ही गया था। और मैं यानी कि चारू वापस आती हूँ थोड़ी देर के बाद यहीं
0: पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned.
2: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
3: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
4: बहुत कुछ होगा.
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन.
7: इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: सागर में आज यार का जलवा दिखा दिया, जालिम मेरी शराब में ये क्या मिला दिया।
1: ये गाने के लिरिक्स हैं भाई।
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
1: 1971 की फिल्म रेशमा और शेरा, जिसमें सुनील दत्त, वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन थे, और इसी फिल्म का ये गाना मतलब कव्वाली, जिसमें पहली स्क्रीन अपेयरेंस हुई थी संजू बाबा की। जी 1981 की रॉकी नहीं, ये वो फिल्म थी जिसमें 10-11 साल के संजू बाबा पहली बार दिखाई दिए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था,
3: रेशमा और शेरा में एक गाना था, उसमें मैंने वो काम किया था, छोटा सा था। ये महबूब स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी और डैडी को एक लड़का मिला था, दूसरा नहीं मिला था, तो मैं मिलने आया हूँ उनको, तो मम्मी के साथ, तो उन्होंने बोला यार इसको कपड़े पहनाओ, इसको यहाँ बैठाओ यार जल्दी से। अरे बाप रे ये क्या हुआ, उन्हें सिर्फ हाथ ऐसे करना है और पापा को देखना है, और जब मैं ये बोलूंगा ना ये जो गाने में आ रहा है शेर, तो ऐसे करना है, वाह वाह वाह वाह। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था, लेकिन कैसे भी करके हो गया।
0: जालिम मेरी शराब में ये क्या मिला दिया, रेशमा और शेरा से। YouTube पे जाके देखो छोटे से संजीव बाबा। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू उंगली ऑन मिर्ची
1: अमित त्रिवेदी स्टूडियो है, गिटार है, माहौल है, रुके किस लिए हैं आप?
2: होने दो बतिया सीने में दिल सॉरी वन मोर टेक प्लीज
1: टेक एज मेनी टेक्स एज यू वांट अमित त्रिवेदी, हम तो सुनते रहेंगे मिर्ची इट्स हॉट
3: Bollywood Boldal. बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
4: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM
6: मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू उंगलियों

0: बाबा में बाबा संजू बाबा।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और बचपन से ही बैड बॉय हैं। एक बार एक इंटरव्यू में इन्होंने किस्सा शेयर किया था कि क्या होता था जब इनके फादर सुनील दत्त से प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स इनके घर मिलने आते थे।
2: एक वेरांडा हुआ करता था, वो सब प्रोड्यूसर्स बैठ के सिगरेट पी के बाहर फेंकते थे और मैं लेट के नीचे वो सिगरेट उठा के पीता था। तो एक दिन दत्त साहब ने बोला कि वहाँ से धुआं कैसे निकल रहा है यार। तो उन्होंने झाग के देखा तो मैं लेटा हुआ सिगरेट पी रहा था। तो उस दिन के बाद मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। मैं बोर्डिंग स्कूल लॉरेंस स्कूल सनार में था 11 साल।
1: वहाँ भी इनकी शरारतें कम नहीं हुई, लड़कियों को लव लेटर्स लिखते थे ये।
2: लेटर्स तो मतलब मैं 15 को लिखता था, मैं बोलता था एक तो फंसेगी।
1: वैसे अपनी शरारतों के लिए इन्हें अपने मम्मी पापा से खूब डांट मार पड़ी है। खास करके मम्मा से किस तरह की मार पड़ती थी एक बार इन्होंने बताया था।
3: और माँ वो मतलब क्या वेस्टर्न पिक्चर देखी क्या कभी, गुड बैड एंड अगली, और हाँ तो वैसी थी वो चप्पल फेंकने में। वो लोग यहाँ से गन उतारते तो वो यहाँ से चप्पल।
1: लो बताओ, मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
2: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।
3: रख, रख।

0: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और संजू बाबा बचपन से बिगड़े दिल शहजादे ऐसे कैसे बन गए, एक बार एक इंटरव्यू में इनके फादर लेट सुनील दत्त साहब ने शेयर किया था।
1: हमारे तरफ से भी और इनके मामू जान की तरफ से भी, दोनों तरफ से एक प्यार मोहब्बत इतना ज्यादा था कि जो ये चाहते थे मिलता था इनको। और ये मेरा ख्याल है कि जिंदगी में मैंने इतनी नाज बर्दारी किसी की नहीं की होगी जो मैंने संजय दत्त साहब की। इसके अंदाज जो थे बिगड़ने के, कि एक बार इसके मन में कुछ चीज आ जाए कि ये मुझे करना है तो फिर तो इसको कोई रोक नहीं सकता। एक बार हम इटली में थे तो ये साहब कोई 3.5 साल के होंगे, वहाँ पे बाजार है विया बेनीतो, तो वहाँ बाहर ही रेस्टोरेंट होती है जहाँ काफी वॉफी की जाती है। इसने कहीं देख ली घोड़ा गाड़ी तो इसने शोर में जाना शुरू कर दिया, मुझे तो घोड़ा गाड़ी पे जाना। तो हम किसी का इंतजार कर रहे थे कि मीटिंग थी किसी के साथ, तो हमने कहा आप घोड़ा गाड़ी पे नहीं जा सकते, अब किसी को मिलना है। तो इसने सड़क के ऊपर लौटना शुरू कर दिया। वो औरतें देख रही है, इटालियन औरतें देख रही है, वो माय गॉड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रूएल पेरेंट्स दिस पीपल आर। एक बच्चे को रुला रहे हैं, वो लौट रहा है तब भी उसकी परवाह नहीं कर रहे। तो मेरी बीवी को बड़ी शर्मिंदगी हुई इस बात में। इतने में बाई चांस वो आदमी आ गया, इटालियन था जिसके साथ हमारी मीटिंग थी। कहते क्या हो रहा है, मैंने कहा कि भाई मेरा बच्चा जो है घोड़ा गाड़ी पे जाना चाहता। तो कहते देयर विल हैव अ मीटिंग इन द घोड़ा गाड़ी इटसेल्फ, सो ही वाज सिटिंग विद द कोचवान एंड वी वर हैविंग अ मीटिंग इन द घोड़ा गाड़ी।
0: समझ में आ रहा है कि हमारे बाबा बचपन से बाबा ही क्यों रह गए। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जींस पर ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: क्या बना?
2: मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: हेलो
4: हेलो
5: हेलो बहन जी।
4: हाँ जी,
5: ये एक सेकंड, ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
4: आप, आपके घर में कोई नहीं है क्या?
5: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड।
4: देखिए, आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
5: नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर। आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटो, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
4: नहीं, हाँ। इसने डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
5: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ, इधर आओ। देखो, मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका,
4: उतार लीजिए उसको।
5: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
4: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
5: अच्छा, ये बेब है। एक सेकंड।
4: देखिए, सुसू करा होगा उसने। देखिए,
5: हाँ, सुसू ही करा है। चल,
4: उतार दीजिए, एक सेकंड।
5: उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही है। मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
4: और मैं पागल हूँ।
5: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
2: इट्स हॉट।
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई, गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
9: 89.6
10: FM, Mirchi 1.
11: It's hot.
0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.

0: संजू बाबा ने भाई बन के फिल्मों में विलन्स का बैंड तो बहुत बजाया है ना।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: लेकिन बचपन में उन्हें ड्रम्स, बोंगो ये सब बजाने का भी बहुत शौक था। एक बार एक टीवी शो में उनके फादर लेट सुनील दत्त, सिस्टर्स नम्रता और प्रिया दत्त ने उनके इस म्यूजिक के शौक के बारे में कुछ शेयर किया था।
2: What a drum set.
3: हाँ, ड्रम सेट था, कुछ
2: बार
3: भी था।
2: Used to be, it was like an alarm. Because भैया एक ही ट्यून बजाते थे, that was the school band.
4: 71 में जब बांग्लादेश हम गए तो हमारे साथ लता जी, इतनी बड़ी सिंगर, तो इसने बड़ा इंसिस्ट किया, इसने कहा कि मुझे भी जाना है। तो मैंने कहा तुम जा नहीं सकते हो क्योंकि उसमें सब कलाकार जा रहे हैं, ये स्कूल से आया था छुट्टियों में, तो तुम्हें कुछ ना कुछ प्ले करना पड़ेगा। तो इसने कहा जी मैं बांगो बजाऊंगा। हम इसको ले गए तो अब लता जी जब आई स्टेज के ऊपर गाने के लिए तो सारे म्यूजिशियंस थे, तो इससे ये गाते गाते रुक गई क्योंकि बांगो जो गलत बज रहा था।
0: तभी से लाइफ का उल्टा पुल्टा बैंड बजा रहे हैं ये। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned.
2: मेरे बेटे आएंगे. मेरे करण अर्जुन आएंगे.
3: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
4: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी.
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM Mirchi 1. It's hot.
0: Purani Jeans with Jaru, only on Mirchi.

0: प्यार लव इश्क मोहब्बत के साथ वेलकम वंस अगेन। आप सुन रहे हैं मिर्ची पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
1: और आज हम ऐसे दो पोल्स अपार्ट लोगों की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने संजू बाबा संजय दत्त की बात की, बचपन में वो कैसे थे, ऑफकोर्स बहुत शरारती थे, आउट ऑफ कंट्रोल थे, और कैसे उनकी पहली फिल्म एक्चुअली रॉकी नहीं रेशमा और शेरा थी जिसमें उन्होंने छोटा सा रोल किया था एज अ चाइल्ड एक्टर। नाउ द अदर आइकॉनिक एक्टर जिनके बारे में हम अब थोड़ी देर के बाद बात करने वाले हैं, वो थे जो पहले बॉम्बे में एक बस कंडक्टर थे और वो अपनी बस की सवारियों को बहुत एंटरटेन करते थे। उनकी ऐसी कुछ हरकतें एक फिल्मी हस्ती ने नोटिस कर ली और उनकी एंट्री हो गई फिल्मी दुनिया में। आई एम टॉकिंग अबाउट जॉनी वॉकर साहब। करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: माधुरी जी, आप अपने ग्रेस, एलिगेंस, पॉइज, अदा, इन सब के लिए जानी जाती हैं। असली में माधुरी दीक्षित कौन है?
4: The elegance and this and that, everything inside is me is like a mad person. And I love mad comedies. And I love these kind of situations which are like larger than life. वो कुछ अजीब सा हो रहा है इनके साथ, अजीब से कैरेक्टर्स हैं सब, यू नो, सब पागल, अनहिंज्ड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स।
3: अब समझी, इसीलिए लोग प्यार से आपको मैड्स भी बुलाते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। फिल्मों में एक शराबी इंसान का रोल निभाने की महारत जिनको हासिल थी वो थे एक महारथी कॉमेडियन बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी साहब, यानी कि जॉनी वॉकर साहब। और एक बहुत पुराने इंटरव्यू में सुनिए, जब उनसे पूछा गया था कि भाई क्या उनका कोई ऐसा थिएटर का बैकग्राउंड था जो वो फिल्मों में आए थे।
1: नहीं नहीं, कुछ नहीं, कभी काम नहीं किया, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंदौर से थे हम लोग और खाली सिनेमा देख देख के मुझे शौक हो गया था, तो चाहता था शुरू से कॉमेडियन बनना ही। और हम लोग रहते थे इंदौर में, लेकिन वहाँ तो कोई फिल्म का कोई सिलसिला था ही नहीं। कोई इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुंबई आना हो गया फैमिली के साथ। ये 1942 में फैमिली के साथ फादर यहाँ आ गए थे, तो यहाँ आने की वजह से यहाँ मुझे कोई रास्ता मिल गया और काम भी मिलना शुरू हो गया। उसमें कामयाबी भी अल्लाह ने दे दी, सिलसिला चलता रहा बस।
0: और कौन से ऐसे कॉमेडियन थे जिनको देख कर ये इंस्पायर हुए?
1: उस जमाने में नूर मोहम्मद चार्ली करके हुआ करते थे, उनको मैं देखता था और उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर था मैं। इसलिए मैंने ये उनको पकड़ के और कॉमेडी की तरफ रागिब हुआ और कॉमेडी करना चाहिए।
0: और एक्चुअली क्या ही कॉमेडी करते थे भाई, जैसे ही स्क्रीन पे आते थे मजा आ जाता था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: 89.6, 89.6,
2: it's hot.

0: भाई 1940s और 50s में फिल्मों में काम करना, ऊपर से एज अ कॉमेडियन काम करना, मतलब मस्खरी करना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत बड़ा ये टैबू माना जाता था, तो क्या लेजेंडरी कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब की फैमिली इससे ओके थी? सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में इन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मेरे घर वाले भी कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस फिल्म लाइन में दाखिल हो जाऊं, लेकिन फैमिली बहुत बड़ी थी, 10 बहन भाई, फादर मदर 12 आदमी थे, और बम्बई में 12 आदमी और अकेला मैं चलाने वाला चक्कर, तो इसलिए बड़ा मुश्किल काम था और बड़ी मेहनत करना पड़ी थी। वालिद को पता चला कि ये मैंने तो फिल्म में काम शुरू कर दिया, तो वालिद ने पहले तो मुझे मना किया, फिर मैंने कहा नहीं आप बेफिक्र रहिए, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होगी और आप मुझे काम करने की इजाज़त दे दीजिए। अब वो मेहनत इतनी ज्यादा थी कि वालिद को मुझ पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया था।
0: भाई वालिद साहब का ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल वाजिब था। एंड वो सारे अमेजिंग गाने जो जॉनी वॉकर साहब पे पिक्चराइज हुए,
1: गुरदत्त जी ने भी गाना दिया मेरे को, तो वो गाने भी सभी उतरे। उसके बाद रफी साहब ने मेरे लिए गाने इतनी अच्छी तरह गाए कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, ऐसा लगता था कि मैं ही गाने गा रहा हूँ।
0: तो चलिए इन्हीं पे पिक्चराइज्ड एक क्यूट सा गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: द लेजेंडरी आइकॉनिक कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब की पैदाइश इंदौर की थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन फिर कुछ हालात ऐसे बने कि इंदौर से उन्हें बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ा। सुनिए इस बारे में और अपने वालिद साहब के बारे में। एक बार एक पुराने इंटरव्यू में जॉनी वॉकर साहब ने क्या शेयर किया था।
1: टेक्सटाइल में थे मेरे वालिद, बॉम्बे में भी आए इसलिए थे कि वो टेक्सटाइल के थे स्पेशल। वो यहाँ जब आए तो सितारा ऐसा गर्दिश में था उनका कि इंदौर भी छूटा इसलिए था कि वो मिल लिक्विडेशन में चला गया। बहुत बड़ी कंपनी थी, टेक्सटाइल किंग ऑफ इंडिया बोले जाते थे वो, तो उनका दिवाले निकल गया। वालिद को यहाँ पर भी नौकरी मिली। अब सितारा मैंने बताया ना आपको, गर्दिश में था तो जिस मिल में काम करते थे उसका भट्टा बैठ जाता था और वो बंद हो जाता था किसी वजह से, तो 3-4 मिल यहाँ बंद हो गए। बीच में गैप आ गया जहाँ वालिद को मेरे नौकरी बहुत अच्छी मिल गई, वरंगल में हैदराबाद नवाब का मिल था तो उनको वहाँ चांस मिल गया। जब उनको ये हैदराबाद की ऑफर आई तो मैंने सोचा कि ये हैदराबाद नवाब का तो दिवाला निकल सकता ही नहीं है, तो ये सोच के मैंने कहा कि चलो भाई आप उधर चले जाइए और मैं यहाँ बॉम्बे में रहूंगा। मैं
0: भाई किस्मत ने जिसको जहाँ पहुँचाना होता है पहुँचा ही देती है। जैसे बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी इंदौर से निकलकर बॉम्बे पहुँच गए, जॉनी वॉकर बन गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

0: भाई ऐसा सुनने में आता है कि बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के एक ड्रंकट मैन, एक शराबी इंसान के एक्ट से गुरुदत्त इतने इंप्रेस हो गए कि उनको जॉनी वॉकर नाम दे दिया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यस, द आइकॉनिक लेजेंडरी कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब, गुरुदत्त की फिल्में और कैसे उससे वो आगे बढ़े, सुनिए पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: तो जब गुरुदत्त के पास मैंने पहली दफा बाजी में काम किया, जहाँ से लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया, वो मेरी पहली पिक्चर थी बाजी, जो गुरुदत्त साहब ने डायरेक्ट की थी और वो उनकी पहली पिक्चर थी। मेरी भी पहली पिक्चर ऐसे थी कि वहीं से मुझे लोगों ने पहचानना शुरू किया। इसके पहले 25-30 पिक्चरों में काम किया था, मगर वो इधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ, एक डायलॉग बोलो, ये बोलो, वो। तो वहां से सिस्टम ये हो गया कि फिर वो गुरुदत्त जी वो क्या करते थे कि पहले सब्जेक्ट जो उनको पसंद होता था वो सब्जेक्ट ले लेते थे, और सब्जेक्ट लेने के बाद वो बैठ के सोचते थे कि इसमें कौन से कैरेक्टर को कॉमेडी का रोल देना चाहिए, बना देना चाहिए। तो फिर वो राइटर के साथ, अबरार अलवी जो उनके खास राइटर थे, उनके साथ बैठ के वो डिस्कस करते थे और सोचते थे कि भाई ये कैरेक्टर जानने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, फिर उसको कॉमेडी ट्रैक पे एस्टेब्लिश करते थे पूरी तरह से। उसी वक्त से ये हो गया कि कॉमेडियन पार्ट ऑफ द स्टोरी होता था।
0: वाह, व्हाट अ स्टोरी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: Mare, del mare, campea.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी, आपको क्या लगता है?
4: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है. I think he is one of those people.
3: Tripti Dimri spilling some truth bombs on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood Bollywood Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: Hello sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अच्छा, आज तो हम बात कर रहे थे दो ऐसी पर्सनालिटीज की जो पोल्स अपार्ट हैं। शुरुआत में हमने संजू बाबा संजय दत्त की बात की, 80s वाले संजय दत्त, बचपन वाले संजय दत्त, फिर जॉनी वॉकर साहब की हमने बात की। कल भी एक खास इंसान के बारे में बात होगी, लेकिन एक और खास इंसान बात करेंगे। अभी आपको कल ही पता चलेगा, सब कुछ थोड़ी ना बता देते हैं। अभी बातों पे ब्रेक, ये खूबसूरत गाना सुनेंगे। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, वन रिपीट।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।